में होता है जो आपके लिए तो हो सकता है कि आप इतनी बिजी लाइफ में आपके लिए टाइम ना हो, पर वो माँ आपका आपकी आवाज़ सुनने के लिए कितना तरसती है। तो मैं सबसे एक विनती करूँगी दर्शकों से जो सुन रहे हैं कि प्लीज़ ये प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाए तो आप एक अपनी माँ को फ़ोन करके उनसे उनके हालचाल पूछ लीजिएगा, अपने फादर से, अपनी मदर से, और एक हेलो, एक सिंपल हेलो ही बहुत है, उनका दिल खुश हो जाएगा। और मैं यही विनती करूँगी कि देखिए माँ बाप को हमेशा किसी भी कैसा भी ओकेजन आता है, यहाँ तो हम मदर्स डे बनाते हैं, फादर्स डे बनाते हैं, वो तो एक दिन होता है, पर माँ बाप के लिए मदर्स डे तो इट्स लाइक एवरी डे, वी शुड सेलिब्रेट पेरेंट्स हमारे लिए, जिन्होंने अपना जीवन इतने संघर्ष में, इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स में उन्होंने हमें बड़ा करा, और कितनी मुसीबतें सही हैं, कम पैसे होने के बावजूद भी कभी आपको उन्होंने ये महसूस नहीं करने दिया होगा कि उनके पास पैसे की कमी है, या माँ ने, अगर आप खाना खा रहे होंगे तो आप कहेंगे माँ ये बहुत रोटी, ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है, हो सकता है वो सब्जी बस लास्ट थोड़ी सी बची हो और माँ ने खाना भी नहीं खाया हो, कहेंगे हाँ बेटे बेटी खा लो, आप ये भी खा लो, कहेंगे अच्छा एक और रोटी खा लो, भले ही वो माँ सब्जी भी ख़त्म हो गई हो या रोटी भी ना हो, तो वो आपको कभी भी ये महसूस नहीं होने देंगी कि वो भूखी है। अगर सब्जी ख़त्म भी हो जाएगी तो वो कहेंगी, आप अगर अपनी मम्मी से पूछेंगे आपने खाना खाया, हाँ नहीं नहीं नहीं मेरा तो बहुत पहले ही से पेट भरा हुआ है, आज मेरा मन नहीं है खाने का। तो ऐसे माँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों के लिए कितनी ही सैक्रिफाइसेस करती हैं। तो हमें, हमारा कर्तव्य है कि अपनी माँ, अपने पिताजी, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे सबसे गुरु हैं, सबसे बड़े लाइफ में, तो हम उनकी हमें अपने जीवन में हमें उनका उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट हमेशा देना चाहिए, चाहे आप पास हों। जो लकी होते हैं, जो जिनके माँ बाप उनके पास रहते हैं और उनको, जिनको सेवा करने का मौका मिलता है, उनसे भाग्यशाली तो कोई और नहीं हो सकता। पर बहुत सारे हैं, जैसे मैं यहाँ पर नेदरलैंड्स में हूँ, हॉलैंड में, और मेरे माँ बाप मेरे इंडिया में रहते हैं, भले ही वो दूर रहते हैं, पर मैं हमेशा, मैं उठते ही सबसे पहले भगवान की नाम लेकर अपने माँ बाप को सुबह सुबह सबसे पहले एक फ़ोन मिलाती हूँ हाल चाल पूछने के लिए, चाहे भले ही वो 5 मिनट का होता है, पर उनसे बस ये पूछने के लिए कि उनकी रात अच्छी बीती, अच्छा, और आशा करती हूँ उनका दिन भी अच्छा जाए और उनकी तबीयत ठीक रहे, सब है। तो वो बस 5 मिनट का हमारा रहता है, मेरी माँ कोई ऐसा कुछ खास नहीं बोलेंगी, पर उनकी आवाज़ सुनकर, वो हमारी आवाज़ सुनकर उनको ये हो जाता है कि हाँ बच्चे ठीक हैं, सब ठीक है। वो तो बस एक छोटी सी विनती है कि देखे अपने माँ बाप को हमेशा अपनी पलकों में बैठाएं और हमेशा उनकी देखरेख करें, उनकी देखभाल करें।

0: श्री गुरु की आज्ञा पालन हेतु स्वयं को झोंक देने वाला शिष्य अरुणी। प्राचीन समय में धौम्य नामक मुनि का एक आश्रम था। उस आश्रम में अनेक शिष्य विद्याभ्यास के लिए रहते थे। उनमें अरुणी नामक एक शिष्य था। एक समय धुआंधार वर्षा होने लगी। समीप के नाले का पानी खेत में न जाए, इस हेतु प्रतिबंध लगाने के लिए वहाँ एक बांध बनाया गया। उस बांध में दरारें पड़ने लगी। तब गुरुदेव ने शिष्यों से कहा, पानी को खेत में आने से रोको। अरुणी एवं कुछ शिष्य बांध के समीप आए। बांध में आई दरारों को भरने के लिए सबने प्रयास किया, किंतु पानी का वेग अत्यधिक होने के कारण संपूर्ण प्रयास निष्फल हो गए। बांध के बीच का भाग टूटने लगा एवं पानी धीरे धीरे खेत में आने लगा। अब कोई लाभ नहीं, ऐसा सोचकर सभी शिष्य लौट आए। दिन भर परिश्रम करने से थके सभी शिष्य गाढ़ी नींद में सो गए। सवेरे तक वर्षा थम गई। तब सब के ध्यान में आया कि अरुणी का कोई पता नहीं है। संपूर्ण आश्रम में ढूंढने पर भी जब वह नहीं मिला, तब वह सभी गुरुदेव जी के समीप आकर बोले, हे गुरुदेव, अरुणी खो गया है। श्री गुरु बोले, हम खेत में जाकर देखेंगे। सब शिष्य एवं ऋषि धौम्य खेत में गए और उन्होंने देखा कि टूटे हुए बांध के बीच में पानी को रोकने हेतु स्वयं अरुणी ही वहाँ आड़ा होकर सोया हुआ है। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। रात भर पानी में भोजन नींद के बिना ऐसा करते देख अरुणी के प्रति सभी के मन में प्रेम भाव निर्माण हुआ। वर्षा रुक जाने के कारण पानी का बहाव तो पूर्व की अपेक्षा घट गया था, परंतु अरुणी को वहाँ नींद लग गई थी। सभी वहाँ गए और उसे जगाया। श्री गुरु ने उसे समीप लेकर प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। यह देखकर सब शिष्यों की आंखों में पानी आ गया। बच्चों, अरुणी से हमें क्या सीखना है? तो श्री गुरु की आज्ञा पालन करने की तीव्र उत्कंठा। आज्ञा पालन करने के लिए अरुणी ने स्वयं का विचार नहीं किया, इसलिए वह गुरु का एक सच्चा शिष्य बना। अतः हम भी हमारे गुरु के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, हमें भी आज्ञा पालन गुण निर्माण हो, हम भी गुरु की आज्ञा का पालन करें।
1: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और बबली जी ने अरुणी नाम के एक शिक्षक का और संदेश, जो गुरु का पालन करने से और क्या प्राप्त होता है, और हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे। फिर कार्यक्रम में देखा जाए कि और संदेशों में संदेश क्या है। आज जबकि गुरु का विशेषता रखा गया तेईमा, तो उसी में हम सब संदेश रखने वाले। पर सुनने वालों, ये मत भूलना कि आप ये मत भूलना कि बुढ़ापा जो आ गया है तो आपको भी कुछ नहीं करना है। उस अंतर्गत में भी कुछ संदेश अभी रखा जाएगा। तो बुढ़ापा का अंतर्गत जो अभी कुछ संदेश रखा जाएगा, वो भी आप गौर से सुनना, क्योंकि हमारा लिखा हुआ नहीं है, ये तो औरों को लिखा हुआ। पर जो लिखते हैं ना, तो उसे भी भगवान का, और यानी कि स्क्राइफर जो होते हैं, तो उसे वो कला होते हैं, और उस वो अपना कला को और यानी कि लिपि में रख देते हैं, यानी कि लिख देते हैं। तो शांता जी, एक गीत के बाद और फिर हम सब ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं।

0: ये सुंदर सा गीत जो हम सब फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा यहाँ डनहाग शहर हॉलैंड से ब्रॉडकास्ट किया गया। दोस्तों अभी आपने सुने और जा करके अनुराधा जी और बबली जी भी गुरु का और महिमा जो और राजेंद्र जी जो भारत से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी संदेश जो रखा गया आज के कार्यक्रम में ज्योति का प्रकाश में। पर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा बबली जी की बुढ़ापे में आराम से और रहने हेतु कुछ सुझाव कहे गए हैं, क्या उसके बारे में आपको पता है कुछ?
1: अभी तक तो नहीं पता, अगर आप बताएंगे तो शायद पता चल जाए।
0: अभी आप कह रहे नहीं पता है, अभी तो बुढ़ापा दूर है ना आपका?
1: लेकिन एक थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, कभी पैर में दर्द होता है, थोड़ा चलो तो घुटने दुखने लग जाते हैं।
0: तो ये तो होता है कि स्पोर्ट करना, क्योंकि एक दिन में हमें कितने अवस्था पर रखना है, कम से कम
1: 6,000।
0: शांता जी कहते हैं 6,000 स्थापन जो हमारे और लिए वैज्ञानिक लोग खोज करके रखे हुए हैं कि एक दिन में 6,000 स्थापन हमें रखना चाहिए। तो अनुराधा जी क्या आप इस पे ध्यान देते हैं कि नहीं?
2: देखिए संजय जी, मैं ये कह सकती हूँ कि हॉलैंड में आने के बाद मैं अपने आप को चाहती हूँ कि मैं बुढ़ापे में भी फिट रहूं, तो इसलिए साइकिलिंग करती हूं, सुबह योगा करती हूं, मेडिटेशन इज़ वेरी गुड। और आप वो सब भी ना करें तो घर में ही आप थोड़ा सा चल फिर लें तो वो बहुत फ़ायदा करता है।
0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि हमारे जो सहयोगी साथी होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और शांता जी तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा और चलता है, 6,000 स्थापों से ज़्यादा ही एक दिन में चल जाते होंगे। पर शांता जी माइक्रोफोन तो थोड़ा दूर से है।
1: बिल्कुल सही कहा संजय जी ने आपने, पर आपको कैसे पता चला?
0: क्योंकि यहाँ हमारे पास एक संदेश लिखा गया कि 14 बातें जो हमें बुढ़ापा जो आ जाए तो उस पर ध्यान देना, यानी कि सुझाव। तो पहला है कि कम बोलना चाहिए ना, क्या इस पर आप लोग के क्या राय है?
2: ये मैं कह सकती हूँ कि भले ही कम बोलें पर सुनने की सहनशीलता होनी चाहिए, लोगों की बातें आप सुने और कम बोलें, और भजन सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, अपनी एनर्जी फालतू की चीज़ों में ना व्यस्त करें। बस
0: कहने के तात्पर्य है कि दूसरा संदेश में ये लिखा गया कि खाने पीने में और संतोषी रहे, यानी कि जो गोल गप्पे का इच्छा होता है और छोले भटूरे का इच्छा होता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बबली जी इस पर आप, मैं देख रहा हूँ तैयार हो गए कुछ कहने को, कह दो।
1: क्योंकि खाने पीने में बुढ़ापे में मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तेल वाली चीज़ें कमती खानी चाहिए। मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो पेट गड़बड़ा जाएगा, और नमक तेल ये भी कमती खाना चाहिए।
0: तो यानी कि अपना खाने पीने पे थोड़ा से ध्यान देना चाहिए।
1: हाँ जी।
0: तीसरा कहा जाता है कि प्रभु का स्मरण अवश्य करें, तो जैसे कि अनुराधा जी ने अभी कहा कि वैसे ही करना चाहिए ना?
1: प्रभु का स्मरण तो जरूरी बुढ़ापे में ही करें, वो तो बचपन जवानी बुढ़ापा तीनों जगह पे कर सकते हैं।
0: तो शांता जी इस पे क्यों ना एक गीत चला देते हैं।

0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने और गीत के माध्यम से भी सुने कि माला जाप करना ये कोई बुरा काम नहीं है, अगर आपसे हो सके तो करते रहना। पर चौथा है प्राकृतिक और जीवन शैली अपनाइए, यानी कि प्राकृतिक यानी कि जो नेचर वाला जीवन है, जीवन जो नेचर को और उसे वारदेर करे ना शांता
1: जी।
0: और उसके बाद में कहा जाता है कि इस पे भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि बहु बेटी के कार्य में दखल ना दे, बुढ़ापा जो आ गया था।
1: बिल्कुल सही।
0: तो ऐसा भी क्योंकि ये हमारे लिखे हुए नहीं है शांता जी, हमारे जो संत मुनियों के लिखे हुए बातें, इस पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए
1: क्योंकि ये अनुभव किया हुए बात है ना।
0: अनुभव यानी कि erfaring layer of fundet det mutwaini dun। इसी प्रकार से हमें मन चाही वस्तु और मिलने पर क्रोध ना करे, यानी कि जो मन चाहते हैं और वस्तु ना मिले तो जैसे कि हमें गुस्सा चढ़ जाता है जल्दी जल्दी, वो ना करना चाहिए ना। अनुराधा जी, इस पे क्या संदेश है आपका?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि इंसान को जैसे हम अपना हमारी उम्र बढ़ती रहती है तो हमें अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए और शांत स्वभाव अपनाना चाहिए। देखिए बहुत बार थोड़ा सा 5 मिनट शांत रहने से ही कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आप 5 मिनट शांत होकर उसको सह लें, ना जवाब दें, तो देखिए एकदम से गृहस्थी कितनी अच्छी चलती है। तो शांत रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
0: तो जैसे कि और अनुराधा जी ने कहा कि शांत हो जाओ, शांत रहना ये बहुत ज़रूरी है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश और ये बुढ़ापा पे भले ना करें ना इच्छाओं को, जो क्योंकि इच्छाओं जितना है जितना जल्दी जितना ज़्यादा इच्छाओं होते हैं कोशिश करना उसे, और
1: जब तक
0: हाथ पाँव चलते हैं खूब चलते रहे और करते रहे, आगे बढ़ते रहे।
1: कारण कि बुढ़ापा और जो बुढ़ापा आ जाता है ना तो हमारे आगे नवयुग जो रहते हैं बेटा बेटी जो है तो मेने फर्स्केल हो जाता है,
0: क्योंकि एक राशि के फर्स्केल हो जाता है।
1: फर्स्केल हो जाता है तो बच्चे जो उनका दिमाग ही कुछ और सोचते हैं और हमारा दिमाग जो हमारा एरफारा दिमाग है तो हम सब देखते हैं कि ना ये गलत है ये सही है। तो इस पर जो हम ज़्यादा बच्चों पे जो रोक टोक करेंगे तो बच्चे इस पर नाराज़ हो जाएंगे और जब नाराज हो जाएंगे तो आप बुढ़ापा पे तो आपको तो एक किनारे छोड़ देगा।
0: और यहाँ हम सब ज्योति का प्रकाश में ये संदेश डाले जाते हैं कि आप कम से कम और उस पे ध्यान देना। और दोस्तों सुनने वालों, जो आठवां संदेश है, अपनी धन संपत्ति का बार बार बखान ना करें, क्योंकि आपने मर्सिडीज खरीदे, आपने बड़े बड़े दुकान खरीदे, आपने बड़े बड़े जमीन खरीदे, पर बुढ़ापा पे सबको धीरे से और बखान ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा लिखा गया है। और अपने परिवार के और समस्याओं दूसरों के सामने ना रखनी चाहिए, तो ये तो एक ऐसा बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बबली जी, आगे को और क्या संदेश है?
3: आगे का संदेश नंबर 10, घर पर आए व्यक्ति से अपने घर की कोई बुराई ना करें।
0: तो बुराई नहीं करनी चाहिए,
1: तो ये सिर्फ जो व्यक्ति जो बूढ़े है उसको नहीं, सिर्फ ना सिर्फ ये, हाँ,
3: ये सही बात शांता, ये सबके लिए है। नंबर 11, अपने स्वास्थ्य के अनुसार घर के कामों में सहयोग करें।
0: तो घर के काम में सहयोग करें यानी कि सॉफ्ट साइकिल अभी भी चलाना चाहिए जब हो पावे तक,
1: तंदुरुस्ती के लिए ठीक है।
3: जरूरी नहीं शांता, सॉफ्ट साइकिल सब्जी काट सकते हैं बैठे बैठे और बर्तन साफ कर सकते हैं बैठे बैठे, कुछ भी जो हल्के फुल्के कार्य हैं वो कर सकते हैं।
0: ऐसे इस बात को सुन करके मैं यह मेरा आजी का ख्याल आ गया, वो सुरिनाम से आते थे और बैठे बैठे रसोई में और सब सब्जी काट देते थे और उसका बस यही ख्याल आ गया।
3: मेरी मम्मी खुद, अगर मेरी मम्मी कुछ और नहीं कर पाते थे तो बैठे बैठे प्याज लहसुन काट दूँ, सब्जी काट दूँ और ऐसे करते रहते
0: हैं। यानी कि सहयोगी सहयोग देते
3: कपड़े तय लगा के रख दूं, यानी कपड़े सूख गए लाओ उतार दो, मैं चपत के रख दूं, कोई कहीं से कटा फटा कपड़ा है उसको बैठे बैठे सुई धागे से सिल देते थे।
0: तो दोस्तों ये है, और कुछ बुढ़ापे जब बुढ़ापा आ जाए तो कुछ संदेश, और इन सब बातों को आपको पता है, फिर भी हमारे लिए कुछ संदेश यहाँ रखा जाता है और हम फिर दोबारा आपके साथ और उसे बांटते हैं।
3: नंबर 12, बुढ़ापे में कष्ट को कर्म फल समझकर खुशी खुशी सहन करें।
0: तो बुढ़ापे में कष्ट को कर्म फल और समझकर खुशी खुशी, पर हर बात तो खुशी खुशी नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कुछ कुछ होता है कि जहाँ आपको दवा लेना पड़ेगा और रोज़ सुबह समय पे और शाम में समय पे, पर कहने के तात्पर्य यह है कि कर्म का फल, क्योंकि एक बार रेडियो से हम लोग बात कर रहे थे तो किसी ने कहा था ये बंद आर्किटेक्ट फॉर योरसेल्फ, आप जो बनाएंगे जो बोएंगे वो तो एक ना एक दिन काटना पड़ेगा। तो अभी हम सब और जो संदेशों में 14 संदेश जो रखा गया है कि बुढ़ापा आने पर उसका और हेतु सुझाओ, तो अनुराधा जी और 13वां और संदेश में क्या लिखा गया
2: जी? तो हमें बुढ़ापे में यह आशा ना करें कि हर काम हमसे पूछ कर ही किया जाए, तो ये सही कहा है क्योंकि सब परिवार में सबको हमें उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और बच्चों की भी सुननी चाहिए।
0: ये बात हो जाता कि हाँ ऐसा ना हो कि हमसे सब कुछ पूछ कर करना चाहिए, नहीं।
2: और जी आखिरी सुझाव है, ध्यान रखें कि प्रभु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, सुखी और निरोगी रहिए, यही मेरी कामना है, यही मैं चाहती हूँ, यही आप लोग के बुढ़ापे में से आराम से रहने हेतु सुझाव।
0: तो सुनने वालों ये बात जो 14 संदेश जो रखा गया आपके लिए, और मैं देख रहा हूँ शांता जी कुछ और बटन दबाने का कोशिश कर रहे हैं, चला दो शांता जी।

0: इस संसार में सब कुछ संभव है अगर शुरुआत आत्मविश्वास से हो। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
1: तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। और मैं हूँ अनुराधा। बहुत बहुत नमस्कार। और

बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को जो कि हर बार प्रोग्राम को अपने समय निकाल कर सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। आज जो वृतांत, अलग अलग प्रकार के वृतांत सुने, उन वृतांतों को मनन करेंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए सबको नमस्कार।

0: सुनने वालों, आपने सुने ज्योति का प्रकाश। कहूंगी ये जरूर कहूंगी कि हर पल का आनंद जरूर से लेना, हर पल का आनंद जरूर से लेना, क्योंकि खुशियां कभी किसी का इंतजार नहीं करते। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए शांता खेमई जी, अनुराधा जी, बबली आसरा जी और राजेंद्र सिंह जी। मैं हूँ आपका सेवक संजय और आशा ये रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश आपके पास जरूर पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को नमस्कार।

सारे दीवाने ओ दीवाने, गोल्डन मेलोडीज ऑफ आनंद ने, गोल्डन मेलोडीज हम देखे तो अदनान साहनी जी की, जी हाँ, और साथ दे रहे थे आशा भोसले जी। नहीं जानता कि मेरे लिए क्या है वो नहीं जानता कि मेरे लिए क्या है वो, मेरे जिंदगी का आधार और मेरी सांसों का तार है वो। कितने देर लड़ ले झगड़ ले पर मेरे लिए, जी हाँ, पर मेरे लिए बस प्यार है वो। सुनेंगे अल्ताफ राजा की आवाज में।

आजा से जब से दूर लगे रहने हो तुम। कितने अच्छे अच्छे लफ्ज़े, कितनी दर्द भरे बयान इसमें हमको सुनाई अल्ताफ़ राजा ने।

और मैं सोचती हूँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो ये कहना चाहती हूँ कि het leven is toch veel te kort om met spijt wakker te worden. Het leven is toch veel te kort om met spijt wakker te worden. Denk aan de leuke dingen en vergeet de vervelende dingen. भी जरूर कहना चाहती हूँ सुनने वालों की द ड्यूरस्ट फ्लोस्टॉफ, जी हाँ द ड्यूरस्ट फ्लोस्टॉफ देयर वेरल इस अंतरान, आपने ठीक सुने कि सबसे महंगा सबसे महंगा पानी जो संसार में है वो आपके आंसू है, सका आंसू है। द ड्यूरस्ट फ्लोस्टॉफ देयर वेरल इस अंतरान है बस्तार 1% वाटर एन 99% गफूलंस। देंक दारों 2 keer na voordat

से हमने सुने कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है और हसीन है। अच्छा सुंदर सा गीत इस दिवस में हमने यहाँ से सुने हैं। को बहुत सारे प्यार मिले। Het leven is zo voorbij. Het leven kan zo voorbij gaan, voorbij zijn. Geniet van je leven, zeg ik. Geniet van je leven zoals jij het wilt. En niet zoals een ander dat wil. Het zijn de kleine dingen in het leven die je blijdschap en liefde geven. ऐसे जियो, ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको, ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको। दुनिया वालों का क्या, दुनिया वालों को पसंद तो पल भर में बदल जाती है।

जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। सुनाए हमको आनंद राज आनंद, जी हाँ आनंद राज आनंद से हमने सुने ये सुंदर सा गीत और गला गया फिल्म मस्ती से। Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, ik waar hier. Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, besef je hoe bijzonder gewone dingen zijn. Om met elkaar overweg te kunnen, heb je niet dezelfde ideeën nodig, maar hetzelfde respect. कहते कि हमें जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, हम नहीं कहते कि हमें जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, बस दूर होके भी दूरी ना लगे इतना सा रिश्ता बनाए रखना। ऐ इश्क मैंने सुना था कि तू अंधा है, फिर रास्ता मेरे दिल का बताया किसने। इश्क करते हो और बर्बादी से डरते हो, बड़े नादान हो तुम साहेब।

सोनू निगम की आवाज़ में हमने सुने कि सब कुछ भुला दिया। फिल्म का नाम हम देखें तो हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम, उसी फिल्म से ये सुंदर सा गीत हमने सुने सोनू निगम के।

खूबसूरत लम्हे जो दिल में कैद हो जाया करते हैं, कुछ खूबसूरत लम्हे जो दिल में कैद हो जाया करते हैं, कसम से, जी हाँ कसम से, उन्हें याद करके हम मन ही मन कितना मुस्कुराया करते हैं। दुख की कैसी भी छाया हो जीवन में, वो लम्हे जीने की वजह बन वो लम्हे जीने की वजह बन जाया करते हैं। कहने के तो सुख दुख आते जाते रहते हैं, कहने के तो सुख दुख आते जाते रहते हैं, दिल में जो रहे वो अमानत बन जाया करते हैं।

0: कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे।
1: निकला हूँ

ये बैंड मैं सोना, ये बैंड मैं सोना, यो विलक नी पोना, ये बैंड मैं सोना, यो विलक नी पोना, अंदर सा एक रोना, I love you इतना, I love you इतना, एक वेट सेल्फ नी कितना।

सुन रहे दीवाना हुआ बादल इंस्ट्रूमेंटल। सुनो वालों, यहाँ से कुछ अहम भोजपुरी फिल्मी भोजपुरी आपके लिए चुनकर रखी हूँ। तो यहाँ से हम सुनेंगे, पहला वाला है काहे बांसुरिया बजावले की

कितना सुंदर से लता जी की आवाज में आपने सुने सुने वालों कि काहे के बसुरिया बजाउले कि चल गए ओकर सभी चैन और सुख।

हाँ भैया कर रे जा चुएला, आपने सुने? लता जी के आवाज में साथे रहते तलत महमूद। हाँ सुनने वालों, यहाँ से आपके लिए पेश किया जाता है और इस बार है कि रखिया बना लो, ये भी भोजपुरी गीत है। सुनने वालों

भाई, एक भाई के लिए उसकी बहन हमेशा बेस्ट फ्रेंड होती है। सुनने वालों, भोजपुरी गीत में भी इतना मिठास है कि सुनते सुनते आंख भर आते हैं, दिल रोमांच हो जाते हैं। आप सब सुनते हैं, आप पसंद करते हैं और आपके साथ साथ मुझे भी बहुत पसंद आते हैं ये सब सुनने के लिए।

0: लता जी से हमने सुने सुने वाले फिल्म का नाम आपसे बता दे कि गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाई बे, लेकिन 1963 तक के ये पिक्चराइज किया हुआ संगीत है सुने वालों, लता जी के आवाज़ में आपने सुने। तो आप सुनते हैं कि लता जी के आवाज़ उन दिनों कैसी थी और आज में वो तो नहीं, पर ऐसे सुंदर सुंदर संगीत हमारे खातिर जो छोड़ गए हैं, तो लता जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: ऊपर से चिल्लाए के दिन बती आवा, नीचे आवा।
2: हम ना आए तो हरे गरज होए तो तुम्हें कहे ना चढ़ आता।
1: कौने कही?
2: अरे गुड़वरिया से देखो ना ही हम सिर नकल हो।
1: अब देखत तो है बाकी ना भैया हम ना आए।
2: वो कहे
1: क्यों देख ली तो का कही तो ही आओ हाथ पकड़ा संभाल के धीरे से जिया हो जिया। अरे

क्या ही अखिया में खो गए। सुनने वालों आपने सुने आयल आयल बसंत बहार, सुनने वालों फिल्म आयल आयल बसंत बहार, हाँ भोजपुरी में ये पिक्चर का नाम भी मूवी का नाम भी लिखा है। और आपने सुने गीता दत्त से और मन्ना दे के आवाज़ में, सुनने वालों

ना डरबे ना डरबे ना डरबे राम ना डरबे राम ना डरबे राम जान लेके जान लेके जान लेके हथेली पे चल गए जमाने से ना डरबे राम

देखे ना ही तो ठेला देखे जमाने से ना डर गया जान लेके जान लेके हथेली से चल गए जमा।

जब दिल लज्जा तो कोई किसी से डरते नहीं है। आपने सुने गीता दत्त से और मन्ना दे की आवाज में। सुनने वालों,

इस बार ये फिल्म के नाम है भोजपुरी, भोजपुरी विदेशिया। हाँ, फिल्म का नाम है भोजपुरी फिल्म या विदेशिया फिल्म का नाम है।

जिया के बिना भवनवा लागे ना ही जिया। गानवा के साथ है ढोलकिया, जो आप सुने तो कितना अच्छा लगे कि ढोलकिया के अंदाज से गनवन में कितना अच्छा लगे, हम आपसे क्या कहें।

इश्क करे हूं जो दिल के दिलदार बारे बलमू बलमू इश्क करे हूं जो दिल के दिलदार बारे बलमू।

मन्ना दे और महेंद्र कपूर से हमने सुने सुने वाले, और ये इसमें तो वार्तालाप हो रहे थे दिल वाले और पैसे वाले के बीच में। और आपको फिर से ले चलते हैं वही सुंदर सा फिल्म विदेशिया की तरफ।

I'm gonna go get

दे की आवाज में आपने सुने वालों, आपने सुने, आप सुन रहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और आप हम यहाँ से बढ़ चलते हैं संगीत संगीत प्रेम कार्यों के लिए।

हाँ जी मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में हम सब ने सुने कि सोनवा के पिंजरा में बंद भैले हाय राम। तो आप सुन रहे हैं सुनवाले भोजपुरी फिल्मी धुन, भोजपुरी गीत जो फिल्म में से जो निकाला गया, फिल्म से निकाला गया सुनने वालों, आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो किया और आप सुनते हैं इसमें रंग बिरंग के गाना है जो हंसाते हैं, रोलाते हैं और वार्तालाप भी करते हैं। दिल के बयान इसमें भी है, अच्छे कैसे कैसे भी सब सभी तरह के गाना है भोजपुरिया में भी।

سال لاجواب رومانٹس مستی بھرے سنہرے پیار بھرا گیت آپ نے سنے سنے والوں भोजपुरी भी भोजपुरी गीत भी किसने क्या कमाल इस गीत में जैसे हमने कहा गाना के अलावा आप जो सुन रहे थे इसमें म्यूजिक खासतौर पे ढोलक इसमें कैसे किस तरह से उसका अंदाजा इस भोजपुरी गीत में कितना अच्छा लग रहा है सुनने के लिए जी करता है बस सुनते ही रहे

दोस्तों, याद रहे, वादा और वचन बहुत बड़े गंभीर बात है मित्रों, पर वचन को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ वचन देने वाले की नहीं होती, उसकी भी होती है जिसे वचन दिया गया है या जिसने वचन मांगा है। और उन दोनों में से अगर कोई एक जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा तो वचन को पूरा कर पाना संभव नहीं है। मित्रों, ये बात आप ठीक से याद रखें।

सज्जनों, इंसान के किए हुए पाप जब उसके सामने आते हैं तो इंसान अपने पापों को देखकर डर जाता है, बिल्कुल डर जाता है। जैसे आप नहीं तो कोई और होगा आपके बगल वाले, तो पाप करते हुए वो अपने विवेक की हत्या कर देता है मित्रों। और जब उसका न्याय होता है तो वो पछताता है, बहुत पश्चाताप करता है, बहुत स्पेट होता है उनको। तो हैरानी की बात तो ये है मित्रों कि वो खुद सब जानता है कि पाप और पुण्य में क्या फर्क है, फिर भी वो स्वार्थ के वश होकर ईर्ष्या करता है, धोखा करता है, विश्वासघात करता है। उस वक्त वो ये भूल जाता है कि मालिक सब देख रहा है, वो सब जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है और वो किसी पर अन्याय नहीं होने देता है मित्रों। और ये बात आप ठीक से याद रखना, आप छोटे हो, बड़ा आदमी हो, पढ़े लिखे हो, जो कुछ भी हो, ये बात सब पर लागू है, सब पर, और आप पर भी।

सज्जनों, भगवान अपने अच्छे लोगों को बहुत दुख देता है, लेकिन आखिर में उन्हें हाथ पकड़ता है, उन्हीं का हाथ पकड़ता है। बुरे लोगों का भी भला करता है भगवान, लेकिन आखिर में पूरी सजा भी देता है। इस दुनिया में होने वाले हर एक घटना भी एक इतिहास है। अच्छाई हमेशा रहेगी और बुराई खत्म हो जाएगी। मित्रों, ये जरूर याद रखना, और ये ना कहना कि हमारा नसीब, हमारा जीवन खराब है। नहीं, अभी खराब है, आगे में चलकर ठीक हो जाएगी। फिर थोड़ा बहुत खराबी आएंगे और आगे इसी तरह जीवन उतार चढ़ाव लगा हुआ। जानते हैं आप ये बात, फिर भी टालमटोल करते हो। खबरदार।

मित्रों, जिंदगी ने मुझे सिखाया है मैं हमेशा नियंत्रण में नहीं रहता। जीवन अनुभवों, सबक, दिल टूटने और दर्द से भरा है, लेकिन इसने मुझे प्यार, सुंदरता और नई शुरुआत भी दिखाई है। ये सब गले लगाओ मित्रों, ये सब गले लगाओ। ये हमें वो बनाता है जो हम हैं, और हर तूफान के बाद एक साफ आसमान आता है। तो जीवन में मुसीबतें आती ही रहेंगे मित्रों, हिम्मत नहीं हारना, सामना करके आगे निकल जाओ, फिर आसमान साफ हो जाएंगे। विश्वास करो इस बात पर।

प्रिय दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जीवन उम्र बढ़ने और बढ़ने की प्रक्रिया के बीच एक विकल्प है? बूढ़ा होना आपके जीवन में वर्ष जोड़ना है, बढ़ना आपके वर्षों में जीवन जोड़ना है। मित्रों, फिर से एक बार, बूढ़ा होना आपके जीवन में वर्ष जोड़ना है और बढ़ना आपके वर्षों में जीवन जोड़ना है। बैठ के इसके बारे में सोचना, समझ जाओगे।

नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों की सेवा में मैं हूँ आपका सेवक संजय, और आपके साथ जुड़ गई है

जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है भगवान से कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिसके घर पे दुख है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपका दुख निवारण होए। जिनका घर में नया बच्चे ने जन्म लिया है परिवार को हार्दिक से स्वागत किया जाता है।

जो अपने तैयारी कर रहे हैं नौकरी के जाने के लिए, तो आपको कहा जाता है कि आपको फैन दाखतु खवंस। जो तैयारी में लगे हुए हैं स्कूल यानी कि अपने पढ़ाई की ओर बढ़ने के लिए, तो ये जरूर कहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने सफर के लिए या कहीं और जाने के लिए, तो ये मत भूलना कि श्री गणेश पहले तो आगे कार्यक्रम चलता है। जो और देश से हॉलैंड देश में और आए हैं फकांसी के लिए, तो आप सभी को हार्दिक से स्वागत किया जाता है। ऐसा सोचिए कि आप एक सुंदर सा देश में आए हैं। देशों में जो एक सुंदरता हॉलैंड के है, आप जरूर दर्शन करके दे आइए। और जो आज अपना मन में ये रख रहे हैं कि हमें अब सफर पे जाना है, हमें कुछ दर्शन करना है, तो जरूर आप अपना तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि कहते हैं कि ये सुंदर काया को हमें जो प्राप्त हुए हैं, इनके लिए तो देवताओं भी तरसते हैं। और जब तक ये सुंदर सा काया हम सबके है, हम ना सिर्फ सत्संग ना सिर्फ सफर पर जो चाहे और अपने सुंदर शरीर से यानी कि अपने जीवन में जो करना चाहे, पढ़ना लिखना कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि संतों ने कहा है कि किस कारण हम इस दुनिया में आए हैं, जरा सोचो सरा और समझो सरा।

कहते हैं कि आने के बाद एक दिन जाना भी है और जाना कहाँ है बस यही बात को पता नहीं है।

सभी को एक शुभ प्रभात कहते हुए कुछ भजनों के साथ कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं।

सुनवालो कहते हैं कि केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होते हैं। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसा भाव है जो पराये को भी अपना बना देते हैं।

से शक्ति देना। कहते जो चीज हाथ में ना हो उन्हें मन से भी आजाद कर देना चाहिए।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। अब ये कहना चाहता हूँ कि आपका रेडियो इस समय चुन है फाहुन एफएम पे, जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक देशों में सुना जा सकता है।

जो इस समय तैयार हो रहे हैं अपनी नौकरी पे जाने के लिए या सफर कर रहे हैं, तो आपको बहुत सा और ये कहना चाहूंगा कि अंदाख फॉल फ्रोइद। और गांधी जी का ये संदेश भूलना मत, उन्होंने ऐसा कहा था कि हम हमारे जो देश है हमारे लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना कोई गलत बात नहीं है, पर हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना ये समझने वाला बात हो जाता है। गांधी जी का ये बात भी आपको जरूर ख्याल होगा कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो।

की उदासियों के विजय तो बहुत है जिंदगी में, कहने के तात्पर है उदास होने का वजह तो बहुत होते हैं जिंदगी में, पर बेवजह खुशी रहने का मजा कुछ और है।

है कि गरीबों के दुनिया जीने नहीं देते, पर इस बात पे किसी ने और कुछ लिखा है कि स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है। स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है, इसमें दर्द थोड़ी देर का होता है लेकिन फायदा जीवन भर रहता है।

फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो से हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। और कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी मंदिर आदि दर्शन करने को चाहते हैं तो दनहा शहर में देव मंदिर जो कहा गया है खासलान पे है, हर रविवार को और जा कर के 2 बजे से 5 बजे तक होते हैं। आप अलमेरा शहर में रहते हैं तो वहाँ पर श्री विष्णु मंदिर जो गोल्डन टेंपल के नाम से कहा जाता है और वो जो 2 बजे से भी 5 बजे तक वहाँ और हर रविवार को कार्यक्रम होते हैं। अगर आप रहते हैं आम्स्टर्डम एंड ओमस्रीक में तो वहाँ पर श्री राधे कृष्ण मंदिर जो 11 बजे से कोई 2 बजे तक और हर रविवार के और चलाया जाता है। सुनने वालों, और अगर जब आप आरनहेम की ओर रहते हैं तो जो वहाँ का मंदिर श्री शिव मंदिर आरनहेम में जो 2 बजे से 5 बजे तक वहाँ पर भी कार्यक्रम को रखा जाता है हर रविवार को। इसी प्रकार से दनहाख में भी राधे कृष्ण मंदिर है जो वहाँ पर भी कार्यक्रम हर मंगलवार को रखा जाता है, जो जा करके 5 बजे से 8 बजे रात्रि तक मंगलवार को। सुनने वालों, जो सुतमेर एंड ओमस्रीक में रहते हैं तो वहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर वो जो कि मंगलवार को 6 बजे से 9 बजे रात्रि तक और वहाँ का कार्यक्रम होता है। इसी तरह से होलंद में कुछ मंदिरों बनाया गया है और मंदिर है भगवान का घर जहां आप जरूर सत्संग की ओर बढ़ सकते हैं। और कहते हैं जो सत्संग में महासागर कहलाते हैं, जो जहां ज्ञान का और सागर बह रहा है, जरूर उसमें आप भाग लीजिए।

सुनने वालों, ये फिल्म जो बनाया गया 1977 में, 1977 में बनाया गया फिल्म, एक फिल्म जिसमें बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया, जैसे कि विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, प्रवीण भाभी, शबाना आजमी, निरूपा रॉय, प्राण और जीवन।

एक फिल्म जो पिक्चराइज किया गया था जिसमें तीन बच्चे जो बिछड़ जाते हैं और फिर पालन पोषण जो अनेक अनेक संप्रदाय में होता है, एक जो जा कर के पुलिस बनते हैं, दूजा कवाली गाते हैं और तीसरा जो जा कर के बार कीपर बनते हैं। तो उसी फिल्म से एक और गीत हम निकालेंगे और आपके लिए रखने वाले हैं।

जर्दी वाले साई बाबा फिल्म जो बनाया गया 1957 में, कहा जाता है कि 184 मिनट तक, जिनका रन टाइम यानी कि कुछ 3 घंटा का फिल्म जो जिनका और रिलीज डेट 1957 में हुआ था, उस समय जो ये फिल्म बनाया गया था और जिनका लेखक खास करके कादर खान जी ने और ये फिल्म को फिल्म का राइटर कहलाए हैं, यानी कि उन्होंने फिल्म को जो डायलॉग से अपना और सजाए हैं और डायरेक्ट जो किया गया है मनमोहन देसाई के चरिए। सुनने वालों, ये एक ऐसा सुंदर फिल्म जो बनाया गया था उस समय के बात है, जो काफ़ी और चला बॉक्स ऑफिस में और जा कर के जिनमें बड़े बड़े एक्टर्स अपना सहयोग दिए। इनमें से सबका अपना अपना होता है, तो हमें जो उस समय का एक्टर हुआ करते थे जीवन, जिनका डायलॉग का और प्राण जो होते थे जो उस समय पे और अपना कला से प्रदर्शन करते थे, तो कितना खूबियां होते थे उसके। हम एक और इसी फिल्म से निकाला गया गीत रखने की कोशिश करेंगे।

अमर अकबर एंथोनी फिल्म से निकाला गया जिसमें मुकरी का रोल भी बड़ा अजीब था, प्यार का दुश्मन बना रहा। और ये सुंदर सा फिल्म जो निकाला गया 1977 1977 में, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी। सुन वाला हम अगला गीत, जो आपके एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं।

ये फिल्म डायरेक्ट किया गया मनमोहन देसाई। कादर खान को जो जानते थे, जो परिवार में जिसे वो जुड़ा रहता था, तो उनको कहावत ये है कि अपना जब डायलॉग उनके लिखने के समय आते थे तो वो भारत छोड़कर हांगकांग चले जाते थे। वहाँ वो आराम से अपना डायलॉग्स आदि लिखते थे और फिल्म को और सजाया जाता था। सुनो वालों, ये स्क्रीन प्ले जो किए है वो है प्रयागराज शर्मा जी ने। इस फिल्म में म्यूजिक दिए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनंत बख्शी के लिखा हुआ लेरस बाय अनंत बख्शी।

ये फिल्म जो पिक्चराइज किया गया पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी, पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी आईडी, उनके आइडिया से ये फिल्म को और लिखा गया। जिनमें कुछ कलाकारों अब नहीं है दुनिया में, अगर शायद आप अभी ये फिल्म देखे नहीं होंगे तो मैं कौन होता हो आपके सजेस्ट करने के लिए। यूट्यूब पे आप जरूर देख सकते हैं, कुछ 3 घंटा का फिल्म। इसमें ये सीख हमें मिलते हैं कि शायद हमारे और हम अपने भाइयों के साथ बिछोड़ गए होंगे, बहनों के साथ बिछोड़ गए होंगे। आज वो परिस्थिति आ गया कि शायद एक दूसरे को देखने को और तरसते हैं। तो जरूर इस फिल्म को देखें और इस पे जरूर अपना जो 2 घोड़े होते हैं हमारे दिमाग में, एक का नाम पॉजिटिव और दूसरा का नाम नेगेटिव, उनके इसके बारे में सोचने के अवसर दीजिए। क्योंकि कहा जाता है जिसके आप ज्यादा खुराक देंगे वो ही जीतेगा।

सुनने वालों, ये फिल्म याराना से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, एक फिल्म जो 1989 में रिलीज हुआ, 1981 में रिलीज हुआ ये फिल्म, जिसमें स्टारिंग अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा और कादर खान अपना कला से प्रदर्शन दिए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि याराना वही होता है। इस गीत को जब हम चलाते हैं तो हमें भी इस बार को हर बार याद आ जाते हैं कि हमारे पुराने रेडियो का कलीगा जैसे महेंद्र भाई, मित्र मनोज और इसी प्रकार से कितने जो दोस्तों अब साथ में नहीं है, तो जो साथ में है उन्हें हम जरूर याद करें और उनसे मिलते रहे, क्योंकि कहा जाता है हम मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। एक और सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

एक और फिल्म जो फिल्म 1981 में बनाया गया था, नसीब फिल्म से एक सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है।

सुनने वालों, ये गीत जो निकाला गया फिल्म का नाम नसीब, जो 1981 में रिलीज हुए 1 मई 1981 को, अ बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर हिंदी रोमांटिक म्यूजिकल मूवी जिसका डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी ने बड़े बड़े एक्टरों के साथ और इसमें काम किए, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम प्राण, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर।

गुलशन कुमार जी की आवाज में हमने यह श्रवण की है हनुमान चालीसा। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जिनके सीने में श्री राम है, जिनके चरणों में सब धाम है, जिनके लिए सब कुछ दान है, अंजनी पुत्र वो तो श्री हनुमान है। आप सभी को एक शुभ में एक मंगलमय दिवस आप प्रस्तुत किया जाता है।

आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। आपके लिए पेश है भक्तिमाला कार्यक्रम।

वाक्य में संकट मोचन नाम है, बजरंग बली की नाम तिहारो, कन कन में विष्णु बसे, कन कन में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी और मन में बसे हनुमान जी।

गणपति बाबा से शुरुआत सब कार्य होता है और उन्हीं के जरिए से हम सब भी खुश रहते हैं, मंगलमय गीत गाते हैं। दुख में भी सुख का अनुभव किया है जब जब मैंने आपका स्मरण किया है। चल रहा हूँ धूप में तो विनायक तेरा छाया है, शरण में शरण तेरी सच्ची है, बाकी सब मोह माया है। रूप बड़ा निराला गणपति मेरा बड़ा प्यारा, जब भी आए कोई मुसीबत मेरा बप्पा ने पल में हल कर डाला है।

जिंदगी एक रास्ता है, एक रास्ता है जिंदगी। किशोरदा जी की आवाज़ में साथ दे रही थी लता जी फिल्म काला पत्थर से। ये सुंदर सा गीत आपके लिए और यहाँ से चला दिया गया है, यानी कि फाहन हिंदुस्तानी रेडियो से जिंदगी का सबसे बड़ा रास, जिंदगी का सबसे बड़ा रास ये है के ये रुकती कभी नहीं, इसलिए हर पल जी लो इसे, इसलिए हर पल जी लो इसे, कल का भरोसा कभी नहीं। कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है मेरे दोस्तों, कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी अपना भी बदल जाता है। जिंदगी का सच यही तो है, यहाँ सब कुछ बदलता जाता है। जिंदगी मेरी प्यारे सुनने वालों, जिंदगी एक गिफ्ट है यार। हाँ, इसे व्यस्त ना कर बार बार, जो जी गया इसे प्यार से वही है असली सुपरस्टार। आप वही है ना द सुपरस्टार।

जाने मन कहलाएगा किशोरदा के भरपूर आवास। रोते हुए आते हैं सब और हंसते हुए कितने चले गए। मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत आपके लिए पेश किया गया है। जिंदगी में सब कुछ मिलता है यारो, जिंदगी में सब कुछ मिलता है, हर ख्वाब पूरा होता है। जो मिल गया उसे कदर करो, जो मिल गया है उसे कदर करो, हर चीज़ नसीब से मिलती है। और ये जिंदगी जिंदगी छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो। हाँ हाँ, छोटी सी जिंदगी है, हंस कर जी लो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आते हैं, वक्त तो चले जाते हैं, क्या समझे मेरे दोस्त।

फिल्म का नाम धर्म करम। एक दिन बिक जाएगा माट के मोल, ये हैप्पी फैर्सी आपको सुना दी है मुकेश जी के आवास में। हाँ हाँ, ला ला ला ला ला ला, बता दे ये मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है। मेरे दोस्त, ये मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उनको भी है, शिकायतें तो उनको भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। प्यार में किसी को खोना भी जिंदगी है। हाँ हाँ, प्यार में किसी को खोना भी जिंदगी है। जिंदगी में गम का होना भी जिंदगी है। हाँ, आपने ठीक सुना दोस्त कि जिंदगी में गम होना भी जिंदगी है। ये तो रहते हैं, यूँ तो रहते हैं हमारे होंठों पर मुस्कुराहट। हाँ, यूँ तो रहते हैं हमारे होंठों पर मुस्कुराहट, पर चुपके से किसी के लिए रोना भी जिंदगी है। प्यार में किसी को खोना भी जिंदगी है।

टाइटल सॉन्ग निकाल दिया गया है। फिल्म का नाम भी कहानी किस्मत की नेकंते इंद्रियन से फंतक में ये पिक्चराइज किया गया है। मुकेश जी के आवाज़ में हमने श्रवण की है। खामोशी मेरी आदत बन गई है, हाँ हाँ खामोशी मेरी आदत बन गई है, तन्हाई मेरी चाहत बन गई है, लोगों से अब उम्मीद ही नहीं रही, लोगों से अब उम्मीद ही नहीं रही, खुद से ही मेरी बात बन गई है। ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ये भी एक बहुत सुंदर सा शेर शायरी है। ना कोई अपने, ना कोई अपना पास है, ना कोई अपने पास है, ना कोई खास एहसास है, भीड़ में भी तन्हा हूँ, भीड़ में भी तन्हा हूँ, बस खुद पे ही विश्वास, बस खुद पे ही विश्वास।

वाकई में यह क्या ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक बहुत बड़ा पहेली है, इसे समझना बहुत मुश्किल है, पर जो समझ गया उसके लिए आसान हो गया है। आज फिर दिल उदास हो गया है, आज फिर दिल उदास हो गया है, तन्हाई का एहसास हो गया है, ना कोई साथ है ना सहारा, बस खुद से ही प्यार हो गया है।

musafir cel gangaki sogan film kanam. Nekantin achten si fintak mi picture eyes kiya gaya hai music director Kalyan ji Anand ji. Gaane wala Mohammad Rafi ji. Is film mein kalakar hai Pran Rekha Amjad Khan. Chal musafir chal. जिसे चाहा था हमने दिलो जान से, जिसे चाहा था हमने दिल और जान से, वही खेल गया मेरा हमारे अरमान से। किसी को जिस्म मिला, किसको रुसवाई मिली, हम मोहब्बत में सबसे पाक थे, तो हमको तन्हाई मिली। दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं, मन से जो भी चाहा वो मिला नहीं। बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, अंधेरे में दिया मिला पर वो भी जला नहीं।

आपके लिए कुछ अलहदा गीत यहाँ से पेश हो रहा है। आज के प्रोग्राम में फिल्म का नाम सोसाइटी, नेकंतीन सेफन तक के ये पिक्चराइज किया गया है और आवाज देने वाला गाने वाला मुकेश जी, और गीत के लिखने वाला जो गीत आपने सुने, हम सब मिलकर सुने मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ अलग अल्फाज इनमें लिखने वाला का भी बहुत तारीफ है, अंजाम है। लिखने वाला का नाम है अनजान। काश के मेरा कोई सहारा होता,

प्यारे सुनने वालों, आपको यहाँ से हम बता दे, हमारा पंडित जी श्री पंडित राजकुमार महातम जी उपस्थित हो गया है। उनको हम बहुत प्यार के साथ

0: स्वागत कहती हूँ। पंडित जी आपको हार्दिक से स्वागत है, आप आकाश में हो।
1: धन्यवाद जी। हरि ओम महादेवम नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देव सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुजिश्यामल कोमलंगम सीता समारोपित्वाम भागम पाणु महासायिक चारुचापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः स्वासित्राय च मोक्षुक स्वरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। कल्याण करने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जाकर था मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुंचे। खास करके रेडियो फान को जो मालिक है मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूं जो इस समय प्रदान किया है घर प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितना ले रहे थे जहां पर रेडियो फाउन के माध्यम से संता जी ने कितने अच्छे ढंग से हम आपको सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आकाशवाणी के सुनने वाले और बुद्ध के तरफ भी आज भगवान का अनुकंपा कृपा हुआ ताकि आपके बीच कुछ ना कुछ हम धर्म संदेश आप तक प्रस्तुत कर सके या पहुंचा सके। पता ना मालूम नहीं है कितने बुधवार हमारे आपके जीवन में आएगा वो तो परमात्मा ही जानते हैं, लेकिन हम आप दो अक्षर जान जाते एक दो अक्षर के ज्ञान कुछ हो जाते हैं ना तो हम सोचते हम सब कुछ जानते, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आकाशवाणी के सुनने वालों वही बात जागर करके शंकर बाबा गौरा पार्वती माँ से कहते हैं हे प्रिय राम के बात राम ही जाते हैं। तो आकाशवाणी के सुनने वाले हम आगे पढ़ते हैं। मानो ऐसा समझते हैं कि मैं थोड़ा पाप करूं जिससे पैसा भी मिलेगा। पैसा से मैं आँख का सुख भोगूंगा शरीर का सुख भोगूंगा और आराम करूंगा, परंतु पाप के पैसा किसी को सुख देता नहीं शांति देता नहीं। मानो को सच्चा सुख की खबर ही नहीं। सच्चा सुख क्या है आकाशवाणी के सुनने वालों? सच्चा सुख क्या है इसका ज्ञान उसे हो तो वो पाप करे ही नहीं। पाप का पैसा जहर की अपेक्षा भी भयंकर है, यानी बहुत भयंकर है। पाप का पैसा कमाने वालों को तो शांति देता ही नहीं। अपित कहा गया है कि पाप के पैसा भोजन प्रयोग करने से कि घर के लड़के के बुद्धि भी बिगड़ते हैं। पैसा के लिए पाप ना करो। परमात्मा सबको पोषण करता है। तुम्हारी चिंता तुमको जितनी है उसकी अपेक्षा परमात्मा को ज्यादा है। जन्म देने वाले से पहले ही भगवान जीव के लिए सारी तैयारी रखते हैं। इस पे ध्यान करना। माँ के स्तन में दूध कौन उत्पन्न करता है? ये शरीर रुधिर मांस हड्डी से भरा है, फिर भी इसमें से दूध किस रीति से निकलता है ये सब परमात्मा की दया अनुकंपा कृपा भगवान के है। भोग भोगते हुए मनुष्य स्वयं की भोग जाता है। भोगी कि शरीर रोग का घर बन जाता है और अंत में काल का ग्रास बन जाता है। फिर भी मनुष्य पाप छोड़ता नहीं, प्रधान कहा गया है, फिर भी मनुष्य पाप छोड़ता नहीं। वे दुर्जन है, राक्षस है, दुर्जन का लक्षण बताया हुआ कहा गया है। उनका लक्षण क्या है, उसका मेंटालिटी क्या, जिसे बोलते हैं उसके आचरण क्या होता है। दुर्जन में दया होती नहीं, वो बिना कारण सबके साथ झगड़ता है। पर धन सज्जनों को, साधु संतों को उत्तराज देता, ये सब राक्षस का लक्षण है। मनुष्य पाप का भय रखता नहीं, इसी से वो दुखी है। मनोजीवन में जाने कहां तक पाप करता है, छल कपट करता है, अनेक जीवों को अपमान करके वो जीवन पूरा तो करता है, परंतु अंधकाल में वो बहुत पछताता है। आकाशवाणी के सुनने वालों, बहुत घबराता है। पाप से कदाचित कोई जीवन की सुखमय बनाओ, परंतु मरण के समय उसकी दुर्दशा होती है। अन समय में जीव की छाती पर उसके समस्त पाप चढ़ बैठता है, इसी से उसको अपार घबराहट होती है। अन समय में घबराहट उसको होती है जिसके जीवन का हिसाब किताब खोटा है, पाप से भरा है, मृत्यु अर्थात प्रभु के दरबार से आया हुआ प्रभु के घर जीवन का हिसाब देने के दिन हिसाब में घोटाला हो तो ही वो जाते समय घबराहट होती है। जिसका हिसाब अति शुद्ध है उसको डर क्या है। रोज कहा गया, हम आप मंदिर में जाकर के रोज बैठते हैं, वहां बड़ा बड़ा लिस्ट लेके बोलते, प्रभु जाके हमें ये दे दो वो दे दो, तो आकाश आने के चलो हमारा प्रार्थना नहीं है। वो हमारा जाकर भगवान से हम क्या करते हैं, भगवान से हम कुछ लेन देन करते हैं। चलो उस पर थोड़ा विचार किया जाए कि जैसे मैंने शुरुआत से कहा कि पाप के धर्म जो है, यानी पाप के पैसा जो कमाते, उसका इंतजाम प्रणाम क्या है, हम आपके ले जाते हैं किशोर महाभारत को। ये बात आप जानते हैं, जिस समय विश्व पितामह मृत्यु सयाबान पर पड़े थे, वहां पर जाकर सब लोग के ज्ञान देते, कहन विश्व पितामह आखिरी समय पर वहां सभी लोग जाते हैं, यहाँ तक द्रौपदी मैया भी गए, चरणों को प्रणाम किया, तो हम मुस्कुराते हैं। कौन मुस्कुराते हैं, द्रौपदी माँ। तो विश्व पितामह कहे हैं, बेटी क्या बात आप मुस्कुराते हैं। तो वहां पर जा करके विश्व पितामह बात कहते हैं कि देखो मैंने किसके अन्न खाया था, किसके अन्न खाया था, पाप के अन्न खाया था, किसके, दुर्योधन के, उसी कारण हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गए थे। कहने का अर्थ है, जैसे हम पिएगे पानी वैसे बोलेगे वाणी। दुर्योधन यानी विश्व पितामह वहां द्रौपदी मैसा कहे, देखो मेरे को जो बाण लगा है ना, किसके, अर्जुन के, अब जाकर हमारा मन जो है वो पवित्र हो गया। फिर से बात दोहराता आकाश होने के सुनने वाले, जैसे हम पिएगे पानी वैसे बोलेगे हम वाणी। ये हमारा पेट जो है ना, ये हवन कुंड के रूप है, हवन कुंड में क्या वस्तु हम डालते हैं ये आप ही जानते हैं। तो हम आपके सिर्फ इशारा करते हैं, कौन धन हम कमाए, जौन धन में हमें शांति आराम, वो धन में कमाना है आकाशवाणी के सुनने वालों। और हम आप ये ठीक से जानते हैं, जैसे जा करके अनेकों बछड़े जो है, गाय के बच्चे बहुत ढेर वहाँ रख दो ढेर है, लेकिन जा करके वो अपने माँ बीच में जो माँ है ना, तो जा करके वो अपने माँ को ढूंढ लेते हैं। इसी प्रकार हम आप जो भी जतना करते हैं सब परमात्मा देखते हैं, हम वहाँ भी जानते हैं, हमेशा चौपाई में कहता हूँ, सियाराम मैं सब जग जानू, करो प्रणाम जोरी जुग पान। इसका अर्थात है कि परमात्मा घट घट में क्षमा सब कुछ जानने वाले हैं। आपके पता नहीं है पंडित महात्म क्या करके यहाँ पर बैठा है, लेकिन परमात्मा तो घट घट में समा सब कुछ जानने वाले हैं। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, यही द्वारा अपना पौरुष में विराम करने जा रहा हूँ। और आखिरी हमारी हिंदू धर्म जो है ना, तो हम लोग प्रार्थना करते सब जीवों के लिए कि हमारा हिंदू धर्म जो है कि हम लोग सब जीव प्रार्थना करते, मंत्र आप जानते हैं, हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भाग्भरे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।

मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ से हमने श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारबिंद से सुंदर सा और गंभीर कथा। वाकई में जैसे पियो पानी वैसा ही बने वाणी, जैसे खाओ अन्न वैसा ही बने मन। पाप की कमाई आप करोगे, पाप की कमाई आप कमाओगे, आप तो शायद खुश होगे, बस आपके बच्चों पे ये असर डालता है, परिवार में ये असर होता है। एक एक शब्द श्री पंडित राजकुमार महात्म जी जो आज के कथा में सुनाई है बिल्कुल सच है, गंभीरता से। इसे हम सुने, जो सुने हैं इसे हम सोचे और विचार करें कैसे और आगे हम अपना जीवन सुधार सके। तो पंडित राजकुमार महात्म जी को दिल से धन्यवाद किया जाता है, आपके तरफ से भी मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देने के सुनाने के लिए।

ये इंस्ट्रूमेंटल चल रहा है, इंस्ट्रूमेंटल को मैं ये रोक रही हूँ और आपके लिए है किशोर दास जी की आवाज़ में, आशिक हूँ बहारों का।

मैं आशिक हूँ बहारों का, जैसे आप भी आशिक हो बहारों का। किशोरदा के आवास में म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, टाइटल सॉन्ग यहाँ से सुने हम, मैं आशिक हूँ बहारों का। मान खवोंत नाम में सांदलिंग दोर त्वे यौंस ऑफ फिट्स, ये लेस्कन दाम के समाचार हैं। अन 68 यारख मान इस अन 68 यारख मान इस अफगलोपन वीकेंड इन एलकार गस्लागन तोर त्वे यौंस दी ऑप अन फेट बाइक रेडन। हेट स्लाख्टोफर वेर्ड दोर हेट त्वे ताल afgesneden. Toen hij daar iets van zei, werd hij mishandeld.

अभी तो जी ले, अभी तो जी ले फिल्म का नाम नेहन दिन सीफन सीफन तक में ये पिक्चराइज किया गया है। आशा भोसले जी और किशोर दा जी ने अपनी साज और संगीत में हमको

मेरे अपने फिल्म का नाम। मुकेश जी साथ दे रहा है, किशोर दा जी ये दोनों मिलकर हमको सुनाएगा।

0: किशोर दा और मुकेश जी ने साथ में मिलकर सुना दी कि हाल चाल ठीक ठाक है। मेरे अपने फिल्म का नाम निकंतीन इन सिफ तक में ये पिक्चराइज किया गया है। म्यूजिक इसमें दी है सलील चौधरी जी।
1: डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस कैफे में है।
0: हाँ हाँ, ये सब गीत आपके लिए पेश हो रहा है। कहते हैं कि ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, बस मुस्कुराते हुए अपना जीवन बसर करो। प्यारे सुनने वालों, 10 का वक्त है, यहाँ से मैं आपसे रुखसत हो रही हूँ आज के लिए। आपसे मैं कहती हूँ स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार, और यहाँ से प्रोग्राम आप सुनेंगे हमारा अनाउंसर साथी संजय जी के आवाज़ में। प्रोग्राम मेरे यहाँ से आपके लिए हम चला रहे हैं।

चूनी मेरा नाम फिल्म जो 1970 में बनाया गया, एक फिल्म जिसमें जाकर के हेमा मालिनी, देवानंद और प्राण ने अपने कला से प्रदर्शन किया। क्राइम एक्शन फिल्म। जिसमें देवानंद और प्राण दो भाई जो बिछड़ जाते हैं, ओ बाबुल प्यारे, लता मंगेशकर जी की आवाज में, ग्रेट सॉन्ग ऑफ द फिल्म जॉनी मेरा नाम 1970। सुनो, मैं हूं संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं।

करते रहे और कहा जाता है कि यदि प्लान आ काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अभी 25 और भी लेटर बचे हुए है, ट्राई करते रहना। सुनो वालों, और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे और बॉलीवुड सॉन्ग्स में से निकाला गया जो अगला गीत हम अपने प्लेयर पे चुन करके रखे हुए हैं।

संगम फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश जी के आवाज में। फिल्म में एक्टिंग किया है राज कपूर और विजयंती माला ने।

मत हो मेरी जा उदास, के झड़ोके में तुमको बिठाएंगे। और ये झड़ोके है क्या, यानी कि दिल से और वही खिड़की। और वहां बैठाकर फिल्म ब्रह्मचारी से निकाला गया, जिसमें काम किया है शमी कपूर।

वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है, जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। लिखने वाले भी क्या खूब लिखे हैं, कि दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है।

अपना फिल्म से निकाला गया 1971 से। कई दर्द भरी गीत भी चला दिया जाता है और ये बात हम जाने कि गलती से हम वो ना कर बैठे जो और कर चुके हैं, क्योंकि बाद में ऐसा दर्द भरी गीतों को सुनने में और समझने में धीरे धीरे अलग सा और शौक हो जाता है। और कहीं आपको सॉरी बोलने भी पड़े तो उसमें पीछे हटना नहीं, क्योंकि हम इस बात को भी जानते हैं कि खोए हुए चीजें अक्सर खूबसूरत लगने लगती है जैसे बीते हुए वक्त

जीत कर आएंगे, वो जीत कर आएंगे। फिल्म गैम्बलर से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। किशोर कुमार जी के आवाज में एक फिल्म जिसमें देवानंद ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। और ये शब्द भी कितना गंभीरता होता है ना। जाता है कि शब्द का भी तापमान होता है, कभी गर्म भी हो जाता है शब्दों, और ये सुकून भी देते हैं। और जब ज्यादा गर्म भी हो जाए शब्दों ना, तो ये जला भी देते हैं। शब्द प्रयोग करो

is full up and downs. Without down, up means nothing.

तारकागम माइलो फिल्म से निकाला गया 1970, जिसमें शशि कपूर ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। ब्रोकन हार्ट सॉन्ग

वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, दिल ने पुकारा फिल्म से निकाला गया 1967 से। और मुकेश जी की आवाज में हम सब इस गीत को सुने। और कहीं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स के साथ इस फिल्म में शशि कपूर ने अपना कला से प्रदर्शन दिया।

मत कहना कि संजय ने कहा था नहीं, क्योंकि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना जीवन में एक बात हमेशा याद रखना किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना।

एक बात हमेशा याद रखना, किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना।

तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। ये सुंदर सा ब्रोकन हार्ट सॉन्ग जो निकाला गया फिल्म पूरब और पश्चिम से, जिसमें काम किए हैं इस फिल्म में मनोज कुमार और शायरा बानू ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। पूरब पश्चिम से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और दोस्तों ये भी कहना चाहूंगा कि जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग को खास होता है। जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग का खास होता है। दोस्तों सुनने वालों, कभी कुछ गड़बड़ भी हो गया तो सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना। क्योंकि जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग का खास होता है।

दोस्तों कहते हैं कि दूसरों के दिल में आप जो स्थान रखते हैं वही आपकी वास्तविक दौलत कहलाते हैं।

दोनों ही परिस्थिति में इंसान अकड़ जाते हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज में हम सब सुनेंगे एक सुंदर सा गीत जो उन्होंने एक कॉन्सर्ट में गाए थे।

एक गीत जो लता मंगेशकर जी की आवाज़ में हम सब सुने, जो एक लाइव परफॉर्मेंस का और यानी कि ओपत्रेद के जो रिकॉर्ड किया गया है, और इतना सुंदर सा गीत जो उन्होंने यो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। क्या हम कभी किसी से वादा किए हैं? क्या हम अपने आप से ये प्रश्न रखते हैं कि कभी न कभी कोई वादा हम नहीं निभाए हैं?

जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। और सफर, जिंदगी और सुहाना, ये तीनों चीजों जो साथ में हैं, तो कहा जाता है दोस्तों कि सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है।

सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो सबको साथ लेकर चलता है।

कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जरूर मैं आपके साथ देंगे। और जो किसी से वादा किया होंगे तो अगर आपने वादा किया है तो जरूर उस वादा को भूलना नहीं।

दोस्तों कहते हैं कि अगर छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाओगे तो आपका बड़ा परिवार छोटा होता जाएगा।

एक वक्त जीवन में ऐसा भी आता है जब इंसान को अपने सच्चे और अच्छे होने पर भी पछतावा होता है। दोस्तों, कभी इस बात पे ध्यान दिए है आपने, या कभी आपने ऐसा कुछ किया है जो आप निभा नहीं पाए? क्योंकि कभी काल के हम कहीं किसी से वादा भी कर लेते हैं और वादा को नहीं निभा पाते हैं, तो क्यों ना वही गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

आशा भोसले एंड किशोर कुमार ये सुंदर सा गीत में और जो अपने कलाक से प्रदर्शन दिए देवानंद और हेमा मालिनी ने। कहते हैं कि झूठ बोलने से पाप लगता है, झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से आग लगता है। दोस्तों ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, शहर जिसे हम दनहा कहते हैं वहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है।

दोस्तों ये कहा जाता है कि उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, हमारे उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है।

दोस्तों, ये तो आप सुने होंगे कभी कि जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ते कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो।

अनुराधा जी के आवाज़ में हम सब सुने रहे ना रहे हम। दोस्तों, ये कहानी भी शायद आप सुने होंगे कभी कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है।

ये सुंदर सा गीत छूकर तेरी मन को। और दोस्तों, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि समय एक ऐसा घड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं, यानी कि समय पीछे को कभी नहीं जाता है, आगे को बढ़ते रहे और बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे ना। समय पे ध्यान देते हुए एक गीत आपके साथ चलाएंगे और फिर हम आपसे विदा लेंगे।

सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आज आप सबके लिए एक प्रोग्राम लेकर आई हूँ जो धर्मेंद्र जी के ऊपर है।

सुनने वालों, आप सभी को मालूम है कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक इतने महान कलाकार थे कि मैंने सोचा आज उन्हीं की जीवनी के ऊपर मैं आपको कुछ सुनाऊं।

तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ सुनने वालों। धर्मेंद्र जी का पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल था। वह 8 दिसंबर 1935 फगवाड़ा कपूरथला जिला में पैदा हुए। एक छोटे से गांव सानेवाल में पैदा हुए।

मेहरा जी ने लुधियाना के लालटन कला स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं पास की। इसके बाद वह एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई पहुँचे।

धर्मेंद्र हिंदी और पंजाबी फिल्मों के एक अभिनेता थे और इनके बेटे बॉबी देओल और सनी देओल भी अभिनेता हैं। धर्मेंद्र जी ने अपने कैरियर में कई हिट फिल्में दी जिनमें शोले, धर्मात्मा, लोफर, यादों की बारात, फूल और पत्थर, जंजीर, बर्निंग ट्रेन, गुलामी, आग ही आग, तहलका, यमला पगला दीवाना जैसी कई हिट फिल्में दी जो एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है और उन्होंने ही मैन के रूप में अपनी पहचान बनाई। और उनकी अच्छी फिल्मों में चुपके चुपके, सत्यकाम, हकीकत, यादों की बारात भी शामिल है।

सुनने वालों, ये जो आपने गीत सुना ये फिल्म थी ब्लैकमेल, और इसमें धर्मेंद्र जी और राखी गुलजार ने काम किया था। उस टाइम पे ये फिल्म चली और इसका गाना भी खूब चले, और धर्मेंद्र जी एक चॉकलेटी हीरो कहलाए। सब लड़कियाँ उनकी इतनी दीवानी हो गई क्योंकि वो इतने खूबसूरत लगते थे।

धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा पर 6 दशक तक राज किया। 60 सालों के भीतर उन्होंने 300 से अधिक फिल्में की। शुरुआत में रोमांटिक हीरो तो फिर एक्शन हीरो के रूप में भी वे खूब सफल हुए।

0: की कैरियर की सबसे हिट और हिंदी सिनेमा में अमर हो चुकी फिल्म शोले में उनका वीरू का रोल आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी लोगों ने इतनी पसंद की सुनने वालों कि उसके डायलॉग आज भी लोगों को याद आते हैं।
1: जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
2: अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं?
3: वो
4: अरे भाई, बात क्या है? तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो?
1: ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय।
2: अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
1: गांव वालों, मैं जा रहा हूँ। भगवान, मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
5: अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो?
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो, तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया? देखो,
1: मेरा दिल भर चुका।
5: देखा, देखा तुमने?
6: हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा।
5: क्योंकि मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर का दोस्त नहीं देखा। जो
1: इसलिए मैं जानते करूंगा, लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहाँ कोई प्रेमी जान देता है वहाँ भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है।
2: कैसी मुसीबतें आएंगी?
1: अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी। इस बुढ़िया की वजह से देख लेना गांव वालों, when I dead, police coming, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की पीसिंग and पीसिंग and पीसिंग and पीसिंग and पीसिंग।
2: अरे मौसी, हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा।
5: अरे कैसे हाँ कर दूंगी ना नाथ जी।
1: अरे गांव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान दे करूंगा। एक, दो, तीन।
5: मौसी, मौसी हाँ कह दो ना।
7: तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी।
5: अरे भैया, मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई।
7: हाँ कह दो मौसी।
5: हाँ, ठहर जा, ठहर जा, मैं तैयार हूँ।
2: मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ।
1: मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो धनो बसंती से शादी करनी है। बसंती से?
5: वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ।
1: अरे गांव वालों, सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी। मौसी जी, मैं नीचे उतरूंगा।
0: सुनने वालों, अभी आपने ये जो डायलॉग सुना, ये फिल्म शोले से लिया गया, और ये मौसी वाला डायलॉग इतना हिट हुआ कि आज जब भी शोले का नाम लिया जाता है तो लोग इस डायलॉग को खूब पसंद करते हैं। सुनने वालों, अब मैं आगे चलती हूँ। सुनने वालों, धर्मेंद्र को किस फिल्म ने सुपरस्टार बना दिया? 1960 के दशक में वह दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार के बाद तीसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। उन्होंने उस दशक में 15 हिट फिल्में दी और 25 सफल रहीं, जिसमें फूल और पत्थर धर्मेंद्र जी की सुपरस्टार बना दिया।

जी ही मैन के नाम से मशहूर हुए। उन्हें पद्म भूषण और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

0: धर्मेंद्र ने अपना फिल्मी करियर भले ही साल 1960 में शुरू किया था, मगर फिल्मों में आने से पहले वो शादी कर चुके थे। धर्मेंद्र ने साल 1964 में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी। यह अरेंज मैरिज थी।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस

धर्मेंद्र के कुल 6 बच्चे हैं। पहली पत्नी प्रकाश कौर से सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल हैं, जबकि दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से ईशा देओल और आहाना देओल हैं। उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अभिनेता हैं, जबकि बेटियां विजेता, अजीता, आहना फिल्मों से दूर रहती हैं। एक बेटी ईशा देओल फिल्मों में काम करती थी।

धर्मेंद्र जी ने 1980 में जब हेमा मालिनी से शादी की तब वो शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थी जिनसे 19 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। उन दिनों ऐसी अफवाहें फैली कि एक्टर ने इस्लाम धर्म अपना कर हेमा जी से निकाह कर लिया।

बॉलीवुड के एक्शन किंग के नाम से मशहूर अभिनेता निर्माता धर्मेंद्र ने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे जो 1960 में बनी थी उससे की। इसके बाद वह फिल्म बॉयफ्रेंड 1961 में सहायक भूमिका में नजर आए।

जितेंद्र जी की कुछ अन्य फिल्में हैं अनपढ़, जिसमें उन्होंने माला सिन्हा, बलराज सहनी और बिंदु जी के साथ काम किया।

सुनने वालों, आप सबको तो पता है कि उस ज़माने में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बहुत हिट हुई और उनकी फिल्में भी खूब हिट हुई, जैसे शोले, आसपास, सीता और गीता, जो भी उनकी फिल्म आती, ड्रीम गर्ल, चरस, इन सब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और वो सब फिल्में हिट साबित हुई सुनने वालों।

उस समय धर्मेंद्र जी की जोड़ी सिर्फ हेमा मालिनी के साथ ही नहीं, राखी गुलजार, आशा पारेख, अनीता राज और भी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जिनके साथ हिट हुई, और सबसे पहले तो उनकी फिल्म मीना कुमारी जी के साथ बहुत हिट हुई थी। धर्मेंद्र जी ने अगर शुरू में बहुत सारी हिट फिल्में दी तो आखिर भी उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी, जैसे 1990 से 1992 तक उनकी सफल फिल्मों में नाकाबंदी, वीरू दादा, हमसे ना टकराना, कोहराम, तहलका शामिल है, जो एक मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी हिट फिल्में साबित हुईं।

24 नवंबर 2025 को इस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया, जो एक कम 90 साल के थे।

धर्मेंद्र के एक भाई भी थे और वो उन्हीं की तरह एक्टर थे। धर्मेंद्र के भाई का नाम अजय सिंह देओल था और उन्हीं के बेटे हैं अभय देओल, वो भी फिल्मी एक्टर हैं।

सुनने वालों, ये जो अभी आपने गीत सुना, ये फिल्म दो चोर से लिया गया। इसमें धर्मेंद्र जी और तनुजा ने काम किया। धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म है 21, जो एक वार ड्रामा है और जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है, जिसमें उन्होंने परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश धर्मेंद्र जी का निधन फिल्म की रिलीज से पहले ही हो गया और वो इस फिल्म को नहीं देख पाए। सुनने वालों,

अपने निधन से पहले धर्मेंद्र जी अपने फार्म हाउस में रहते थे सुनने वालों, और वहीं पे वो थोड़ी खेती बाड़ी करते और ताज़ी ताज़ी फल सब्जियां उगाते और उसी को ज़्यादातर वो उपयोग में लाते थे। और बॉम्बे वाले घर में वो थोड़ा कमती रहते थे क्योंकि फार्म हाउस में खुली हवा, खुला वातावरण उनको काफ़ी पसंद आता था सुनने वालों।

फिल्म यमला पगला दीवाना 2011 में प्रदर्शित हिंदी हास्य फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल ने काम किया। सुनने वालों, धर्मेंद्र जी ने चरित्र भूमिकाओं में भी काम किया। 1990 के दशक में उनको एक स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसी भूमिका में उनकी पहली फिल्म थी सोहेल खान की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें उन्होंने सलमान खान, काजोल और अरबाज खान के साथ काम किया।

उनकी अन्य फिल्में हैं कैसे कहूँ के प्यार है, किस किस की किस्मत, लाइफ इन मेट्रो, जॉनी, गद्दार। 2023 में उनकी फिल्म आई करण जौहर की रॉकी और रानी, जिसमें उन्होंने शबाना आज़मी जी के साथ काम किया।

धर्मेंद्र जी ने हिंदी के अलावा पंजाबी और बंगला फिल्म में भी काम किया है। सुनने वालों, राजनीतिक, धर्मेंद्र ने 2004 से 2009 तक राजस्थान के बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद के रूप में भी कार्य किया। धर्मेंद्र जी ने फिल्मों का निर्माण भी किया। सुनने वालों, 1983 में धर्मेंद्र जी ने विजेता फिल्म्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी के नाम पर रखा। 1983 में रिलीज़ हुई अपनी पहली फिल्म बेताब में विजेता फिल्म्स ने धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल को मुख्य भूमिका में लॉन्च किया। यह फिल्म उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल का निर्माण किया, जिसमें सनी देओल ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के फिल्म फेयर पुरस्कार सहित 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। इसे संपूर्ण मनोरंजक प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 1995 में धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना को लॉन्च करने के लिए बरसात फिल्म का निर्माण किया, जो उस समय तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और आज तक यह पहली और एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें नए कलाकारों को लिया गया था।

सुनने वालों, अभी मैंने आप सबको थोड़ा सा धर्मेंद्र जी के बारे में बताने की कोशिश की। मेरे को लगता है कि आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा। आगे फिर अगली बार कुछ और बताने की कोशिश करूँगी सुनने वालों।

जीवन में सभी चीज़ें एक साथ कभी नहीं मिलती। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, और अगर तीनों हैं तो जीवन कम है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

Companhias Irmãs. तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरे राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम। ये

और दोस्तों तू धड़कन है के बाद हम तुरंत चलते हैं और चलते हैं अपने सूरीनाम की ओर। आप लोग को पता है हमारे यारों की यो लीफ टाइट है, पेंशन लीफ टाइट जोन है यहाँ हॉलैंड में, कहाँ 5-6 तक से 7-6 तक कर दिया। अब ये जो यहाँ के यानी कि ये तो है रॉब यादव मांगे है 7 तक करे दोस्तों। इसके बारे में यहाँ के बोंद जो है बहुत नाराज है, बोले दित मुत वेख फंद ताफल, तो ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा और आगे में आप लोग बताएंगे। लेकिन दोस्तों बात ये है कि हमारा सूरीनाम में जो है वहाँ के मिनिस्टर फ्रॉम बेनेलान्स साके जो है रखेरिंग जो है और वो सब मांगे हैं, वहां पर भी जो लीफ टाइट है यानी कि पेंशन लीफ टाइट जो है इस समय पे वहां सस्तक है, सब मांगे सूरीनाम में भी फरहूख करे फनाफ तुए ये सस्तक तो फेवन सस्तक यार मेंशन। तो ये सब सूरीनाम देश में सब मांगे हैं पेंशन लीफ टाइट भी फरहूख करे। और एक बारे में जो है जो बारे में हैगा पेंशन लीफ टाइट कॉन्क्रीट खफरा ओम उत वर्कन फन 62 आन 65 यार और मिनिस्टर फन बायदनस साक जो है मरिनस बे हैगा फॉर ब्राइट करे हैगा वेट हीफिंग फन पेंशन फन 60 यार तक खान फरहूख मेंसे कॉन्क्रीट इस आन टीम फन डेस्क गफरा कि कैसे ये पेंशन ग्रेंस हुआ कैसे काम होगा। बोले हैगा से वर्कर न्यू अन एडवेट वेस किंग वे तो मांगे से वन फ्रेंडर करे। बोले कैप से ओ गफरा और मेट माचखपलक मेनन फेल मार ओक द बोंडन तब ट्रैकन जो ने डेमोस्ट्रेशन ना हुए बोंड के इनमें का बोले हैं व्हाट वर लेयर आई द एरफारिंग फ्रॉम अंदर लंदन जैसे फ्रांकराइक भेले कि वहां पर सबन डेमोस्ट्रेट करिसेगा और यहां पे भी मांगे बोंड से बात करे जो डेमोस्ट्रेशन ना आवे और लीफ टेर ग्रेंसवा जो है और फरहूख हो जाए। और बोलेगा बोले लीफन एंड यंगर आई सीन और बोले वार्डोर हेड लाइक आउट ऑफ द ओवरहेड कैनस वेखोइट। बोले है अन मेंस दी डिस्पेंसेशन फ्रागन ओम ना 60 यार दूर तो कुनन वर्कन सेन बदूलिंग इज दार ओम ओम दिट यार नोग हेड फर्स्ट फोरस्टेल इन दे एना बहांडल तो क्रेगन। तो सूरीनाम में भी सब मांगे चढ़ावे हुआ के आदमी नो क्रिटिक लीवर करे है दोस्तों। Maar ik vind namelijk de gezondheidszorg moet daar eerst veel verbeterd worden. Want het moet gewoon al snel maar ja, bhaiya. Aap log jano hai, karan ki hua gezondheidszorg jo hai Suriname desh mein is niet zo goed. Waardoor mensen eerder gaan ze overlijden mensen. En ze mangen 70, de 70 kardi. Is de kans groot mensen dat heel veel mensen hun pensioenleeftijd niet halen. तो हम चलते हैं भैया सिमोंस के ओर। ये बड़ा प्रॉब्लम है देशवा में यार, हम तो से का बताई दोस्तों। और इस सिमोंस से बुढ़िया हो गई है और जाए के इतना फ्रांतोरलक है अस प्रेसिडेंट जाए के कुर्सी पे बैठ गए हैं वार दौर इन ना चलाई पावे भैया बोली सेगा से से से हार्ट ने ने ने बहुत चीज ओके घसकावे पर गया पासपोर्ट ना कर पावे है वार्डोर देश मफराओं ने रस नहीं देखे और जाए के ले लीजिएगा उतना बड़का प्रॉब्लम दे स्वामी जो कितना रोज से रहा एंड से वेट ओक नीड हू से दिट मुत खान ओपलोसे यहाँ पे निकलेगा 25 मई के ontdekten we dat de NDP 18 zetels had in plaats van 23 zetel. बोले है जब उभाइल है 25 तारीख मई के फरकीसिंग थे बोले हम लोग देख लिख हम लोग के खाली 18 zetel है in plaats van 23 zetel और ik kom er over 2 jaar weer op terug. Op dit moment is dat niet van belang. Maar बोले दो ही बरिस बात है मैं कर बारे में बतावे बोले हम लोग सोची हम लोग के 23 zetel मां बोले खाली 18 वो है बोले दो ही बार इस बात एकर बारे में हम लोग फिनो आबे एनडीपी के बारे में बोले हैं फॉल्कर सिमोन मुझे एनडीपी डीलन में तो वास्ते तुन हाथ
और उनके सबके लिए के काम करे पर वनफान कोलिशी में दुनिया भर के रे यानी कि पोलिटिक पार्टी ओमा बा और बहुत जुगु जुगु हम सब मांगे अपन ऐखा बलांग करे और सीमों सबके कर ना पावे तो बहुत चक्कर में पड़ल है। और एक तो देश इतना छिछा के लेदर भैया बतावे फोल्क एनडीपी फोर सीटर बोले हैगा बोलेगा योंगरन है बन खसे असिस्ती मुस्किन की एक भी लाख वेर एक बिनन और खान दे देना है हिफ तीन यार खदीन ओम फान अन बपाल पिन नार अंदर पिन तो कोमन सो दा साकन बेटर कोंदन फिंशुनेरन वो हूपन दत वे बेद दे Legaliseren onze bestuurssysteem kunnen verbeteren en dat we hiervoor geen 10 jaar nodig hebben. Het kan eerder en we beginnen het dit jaar. बोले बहुत ingewikkeld है एक बारे में सिमोंस बोले है हमारे दोस्तों अति नित मकलक सुरीनाम इस इन अन हेल ग्रोट प्रॉब्लम से और लीनिंग के ऊपर लीनिंग सब ले हुए भैया तो अभी इसके बारे में हम आप लोग को और बताएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बताए गए है बताए गए भैया बहुत जबर सुरीनाम में रेबीज बिका है भाई रेबीज वहाँ जाए के किनियो जैसे कि दुकान में जइयो तेगो बोरू किन लियो गो कोला किन लियो ऐसे सुरीनाम में रेबीज आदमी हुआ बेचे है बताए गए है मीडिया पे और कितने हैं बिना रेबीज के चलावे है और चलेबो करे है बिना रेबीज तो दारू ढकोल के चलावे है। तब देखो भैया एगो आदमी दारू पी के एकदम नशांद रहा ऊपर सुकर रही बेवाइस ना मारे जाए के एक मिला के बरीफ बेस एकदम छित्तिर के बित्तिर होएगी ओकर बाद में जाए के को पेड़ में मारी ओ तो एकदम तो उतर लॉस होएगी। अब सोचो ये भैया के बरीफ बेस किन के लगावे एक परी नानी यही न ट्वेन तक यार के लौंडा यहाँ पे बतावे गए हैगा बोले हैगा खुवानी का बात है लेने आख के बात है गए ले को बरीफ बेस में मारी से को पेड़ में मारी से और रमिया बहुत जोर चलावत रहा तो रही बेवाइस ना रहा ऊपर से दारू ढकोल के चलावत रहा। तो यहाँ बतावेगा रोन ट्विन तक 25 आठ बजे रात के 8:30 बजे रात के मेल्डिंग आयल है एगो पांच नंबर नीखने नीखन तक हैगा वहाँ पे ओ तो जाए के बॉक्स भाई लेगा और बड़ा फरकलार करी से उज्जर उज्जर ओ तो है ब्रीफ बेस पेड़ में मार के और टंगल है और आठ नंबर के बात है लेने आख रही दिन आठ नंबर के बात है और बोल स्टिल तांत एगो क्रेश पेंट जैका नाम बा हरिदत्त लालिश रात के और बताएगा रनमिया इंडम नशा आंद्रा नाम का खीफंस द मन वेट आन खाओदन भले मरल ना भाई और जाए के एक के पकड़ी से और सिकन है इसमें गले बहंदलिंग के इन ट्विन तक यार के लुंडा और जाए के इतना बड़का अरेडिंग करी से दोस्तों बहुत दुख के बात है। सुरीनाम देश में ऊपर से दारू पिए हैं ऊपर से ओतो चलावे हैं तो कैसे अब देखो भैया हाँ ये रखे रेंगवा एक तो पैसा ना देसुआ में बड़ा जोर बरासिलिए घूमे भैया देना अलवेर देना बोले एकर हमंगल ऑफ हेल्दरिंग तुम बताओ कि तुम कितना पैसा ले ले बरासिलिए जा तो कानी कहाँ कहाँ तुम जा है छू छुआई जा है का कि काम से जा एक बार ऑफ हेल्दरिंग मांगी सेगा जेनिफर सिमोन से जो वुड्स डाक के फिनो ब्राजीलिया गए ले डोमिनिकन से रिपब्लिक गए ले जेमा एगो देना लेत अमारानी जर्वंदन जोन है स्टाटसोफ के बोले है बेटल आंसर राई से बोले बहुत ढेर है ऑपली फ्रॉम फॉर सुरीनाम बोले हम लोग का कुछ फायदा ना है और तो लोग घूमे हैं बोले खप्लेंदर है ब्राजीलिया के प्रेसिडेंट में तो दिले खास इफान मिनिस्टर है सो आप रही से निकदाई और ही गैला भैया जहाँ होकर आदमी भी गैला घूमे और बोले खून गैला बके हुआ नूतुले करत रहा वरफान सिमोन बोले रहा होकर आदमी रखेरी में एक को भुन ना बमुई करेगा मैया खाट वेल ना हम लोग नूतुले माँ के एन आंद्रे डिंगर जरबंधन जोन है बैतलान से साख के बोले मिसी आंसी kosten zijn hoog. Bolle zij vraagt zich af wat concrete voordelen zijn van de reis van Brazilië. Zeker omdat de afhankelijk geplande ondertekening van de memorandum van of de onderstanding over de maritieme samenwerking zou zijn teruggebracht tot een letter in intent. Toen hier hebben we het aan we minister Geila, verluid minister LVV Geila, TC
TCT kegela, Zozavo kegela, Defensie kegela, hele delegatie kegela, Gome Bayamela, begrotingsposten, de reis wordt betaald. En waarom de regering hierover geen antwoorden aflegt bij Nationale Assemblee, Bulletulo, het rijder door jaar groep barbekitulo, nabatawe kakre jahe, Bulleker waarom tulkit geen verplicht jape, Batawe, Bulle, zo werkt het niet, zo gaat het mensen. Arinya Simon bhaiya Simon bole hum log chahta mein baati na letter lag ke baad batiya hai kisi naam mein itra barsa bhale baat chale hai mother pool ke bare mein bhaiya president Simon bole wo kunnen geen mother pool in een sta verander in een glas drink water bole deswa itra chahta mein hai aur bole thoru ek glass pani mo ke hum log safa kar pabe ma well bole chalat rahe bole mo king cast This is the wakab kinki kariye president. Bole model pool ek ghanta bole bole ki ek roj pe hamlo na problem oplos kar pabe. Ab 25 tarikh mai ke khinge staatshof ego situasi al yaar ek varish hoi ke 25 mai ke ek varish hoi ke deswami lekin abbe tak kuch moi na bhail hai. Simon bole hai ga hamlo thoro ek varish mein do acha moi kar pabe. Bole falita vesel kurswa stabil kalir baki uta chance संतो की करके गए रहा अमदा तो के रिजर्व कास में पैसा धर दे रहा तब कुछ स्टेबल भइल है और या सिमोन नाम बनावे फरागा उड़ावे कि हम स्टेबल कर ली है ओक इस एरकास्टार्ट में अंदर मनीर फन वर्कर बोले दीर होंद एरफीसी सेगा और एरफीटी सेगा ऑन द बेटर द लातन फंक्शनरन और हम अगले जाने कौन सी फंक्शनरी सब करे है फर्दर व्हाट इट ओक एनालिसिस फन स्टार्ट बिड्राइवन gemaakt और बोले हैगा En natuurlijk mag ik ook een brug komen naar Guyana. Maar dat is echt niet haar primaire doel. Bolle blokkia mange banawe, maar bolle ook haar doelen na. He. Ik ga echt werken en naar zaken stap voor stap te verbeteren. Oh, Joost Santoki, bolle dat stap voor stap op hoe je wordt op je gebruik krijgen. Bolle hega, ik ga brugkie banawe Guyana, ze unikiri ze. Bolle jaar kapot hebben gemaakt en de basis te leggen. Zodat ik de... Abataya, zodat we in de komende periode repareren. Rasta sab tutal bhaiya, barka barse sab bulal hai. Abole hega, Simon ontdekte ki okar partij ubersia. Dat zijn 23 zetel, maar slechts 18 go khali paise. Daarop zal zij echter pas over een jaar of twee. Bole wat jij, ik heb je bataya rehi. Baki president to bate na. De president bate. Dat is wat een mooi kerse, ne, mevrouw Simons president. En u zal... अब ना बोले है संतोखी के कसूर है ना बोले वो बतिया दोस्तों ऐसे बतिया है अब देखो भैया का बोले देना लीडर जो नहींगा उस सब के फरहोर हुए है हां सोमो हार जो भाई बड़ा प्रॉब्लम है कई मिलियन यहां बतावे वो हड़पी से या दराई करी से पेकर बारे में फरहोर भइले रियाद नूर मोहम्मद भी भइल है और का बोले हुफदरात के बकिफसी हुफदरात तो आइबे ना भइले दूर से बातचीत करे लग पानी पियावे है और बोले हम कुछ ना कर ले कहे तो तू भगल बाटे एगो चोर हरदम लुका है चोर ना रहिए आओ देसवा में अपन साख लड़ और यहां पे बताए सो मोहार जो ऊपर फरवेटर योरदान एकलाथर फोर हरिकनिंग पेल के को टॉपर ब्रोंटो अपी गइल है भैया बोले फरवेटर पॉलिटिक के मुसी फन को लिख देना वार्डन ओक अबो पार्लियामेंटेरियन योरदान दैट फॉर रिकने और बोले हैं एक यानी कि अबॉब के फोर्सेटर से बोले हैं एक इंटरव्यू पे बोली सेगा Brunswijk, bole tu apre mangle rehle okke ka bole chance to ki kechi jo tu for the left le ya ana bole ki ab tu kon chi batiya hai bole ab jo for the left gel ta tu chilla bate ki santoki okke for the left le ge hai ga so khatan men se ab dekho ek admi ka naam ba yo yo besari er wankang besari is ook verdag in de strafzaak van de Surinaamse postparbang idun bhaiya bhi ndp en mere khayal se raha aur ye sab abhi tulun jano hai
Vega, Posparban, Hoofdraad, Kromosuto, Orkeke, Bandra, Abdinia, Duimila, Aur Oma, Kabule Hega, Verdachtba, Aur bekende politieke personen, Suparmin, Jojo Besari en Usman Wanka Besari zijn ook verdachten van het tweede deel van de strafzaak van Surinaamse Posparban met Jojo Besari. Ik hoop top NDPR die bij de overige verkiezing aansluiten zijn. Zocht bij de ABOP met zijn eigen politieke beweging. Wang Sang Besari komt uit de KTPI, een nieuwe stijl van KTP die bij de verkiezing van 2020 met de NDP heeft samengewerkt. Kali NDP, Yekademir Karia Dada, Kromo Suto NDP, Terek NDP, Oro Yareki, Hoofdraad NDP, Oro Jojo Besari NDP, Sub Ehi Sub Des Loot Ke Bait Ge Hamar Janta, O Hamara Pyare Janta Ehi Sub Ke Phir 5 Baris Ke Baithai. Dit is kan niet, mensen. Jullie moeten toch jullie ogen openmaken. Er staat hier duidelijk aangegeven wie die rovers zijn van ons land. Dat ziet u hier. En hier betaalde gij, hè, dosto. Betaalde gij, Wang Sang Besari komt KTP ICE. En de Peekse Kamer. Er zijn een aantal verdachten in deze zaak. Naast de politici zijn ook ondernemers. Twee andere bekende namen die genoemd zijn van de verdachten in deze zaak zijn Anwar Hassan Khan en Gin Mardo. Kromo Suto Khali Malai bhaiya hum dekhila kono Anwar Hassan Khan bhi hai. Aur ye Hassan Khan joon hai ye social media pe bahut jabar NDP ra bhai aur bari bari baat pe yahan pe ke bole hai. To op vrijdag 22 mei ke sakwa voor de rechter geil hai. Verdachte zijn deze straf zijn aangemerkt. Jeka naam ba Telalan Hassan Khan ego a Hassan Khan hai aur Kromo Suto hai Hassan Khan Duigoba, Bhikam Singh hai, Jojo Besari hai, Wang Sang Besari, Bari Besari bhaiya, aur Kartu Rejo hai, Harpal hai, Sarjo hai, Tawahir Ajub NV hai, Global Equipment NV hai, Earth Cleaning NV hai, NV Garamengo hai Holding, Stichting Anvar van Multu, Electrial System NV, itna badka groep hai, jo hamare desh ke loot ke aur chapadai ke baith gaye hai, jo aaj hamare janta roye hai, aur bole the saaks don for verhoor van verdacht Kromo Suto, Hassan Khan, Jojo Besari, Teral en Earth, Kling NV over de project, Richel 2 en de verdacht Kromo Suto, Hassan Khan, Wasan Besari, Korcho, Ise Bhaiya Bari Naam Hai, Khali Malai Re Bhaiya, 3 Quart Khali Malai Hai, To Aaj Kal Malai No Bhaiya, Na Khali, Ka Bole Saatei Kai Ma Ke Banai Ke Banawe Hai, Dekho Malai Lo Nhiya Ka Kare Hai, The Ratsman Fana Fardakhtan, Karto Rejo Estikte Anfar Tbar, Die Tevers Waarnaam Voor de Ratsman Fana Fardakhtan, Wasan Beheeft Het Verzoek Gedaan Tot Uitstel Van Het Verhoor van de verdachten. Moeten we verhoord naar uitstel. Kijk, haak naar jij de zwaar. Vervolgens zijn de verdachten Kromo Suto, Hassan Khan zomaar is het thoro mange hega. Zomaar thoro mange bhaiya. Ke hem loog ke peeghing nikare. Ke is het enemy ke jabad haat hai. Sab mil ke mange peeghingya ke nikare. So dat is het ke sakwa in mar jai. Lekin peeghing ke koi na nikar paai bhaiya. Hiya bataye gaye hai. Verdachten Kromo Suto, Hassan Khan, Wasang Besari, Karto Rejo, Terlan, Sarjo, Multi-Ertonaal System NV, Bole over het project Waterland. Verder zal op die dag al verdachten worden verhoord. Hassan Khan, Tawahir Ajub, NV Terlan, to isabke verhoor hui bhaiya, OM sabke ima bhaiya hamare. Look, dekho hamara desh mein kaun kaun khai ke baithal hai, to ab ichi jua bofa water aave hai, aur hamare janta Suriname ke ehi ke rakhering ke stem karke baithai se, to jo boliyo to boliyo fe yaha pe kaun chik karis ya fe yaha pe ke banchit na hove hamare janta hiya banchit hove je hamara desh loot ke chaparai ke aur aaj baithal hai. Aur dekho bhaiya hum aur aage jaila yang land bower jo nikeri mein hai, ab kheti dusar cheez kare, khali chaur ke kheti sapna mange kare bhaiya, hamara khetiyar jo hai nikeriyan jawan jo
van hij direct oudsher bekend staat als reisdistrict. Ja, han pe hue he abolep hua pe sap mange hega citrus aur nariyer bana fruit soorten hua mange sap lagawe. Sommige boeren beschikken inmiddels over aanplanten van duizenden citrus bomen aur bole sap bowelagal he bole chauruwe khali sap na kare landbouwers in Nigeria zijn al in diversificeren. Oh, bhaiya yahan pe bataiye professor Sheikh Waidu. Are bhaiya Velia Waidu under director sab banai se landbau fetil fisherai ke. Oh bhaiya peal mase nikar ke jaye ke NDP me gusal la si talwe na paye raja NDP jaise gusal direct sab unke under director bana de bhai. Ye hamara desh hai. Fir dakse trine van de citrus. Oh bole hega landbau en voorlichte in Kiri. Ook Ryan Tukun, waarnemend directeur onder afzet LVVK. Toen wapen, bij jou, wie heet je, Joyga, de Malayloon, zijn barka barka postpawe, je hebt ze geil hè. Iedereen denkt richting olie gaat, maar we denken ook kijken naar onze eigen voedselproductie en voedselveiligheid. Teel de Kugayana, Minikere, Bakigari Thai. Wapen, ooit nee, dosto. Dus jullie moeten niet denken, Kitelwa Nikrelegi 2028 mee. Tahamlon hiape, na chap e gorpe, chijua aise na he. Want deze regering die heeft nog geen enkele voorbereiding gedaan, mensen. To aanplokke je hem bata dete he. Ab de ko minister Stanley Suro Paviro, ou hega Malai Pino, bhaiya, ou hega grondbeleid en bosbeheer ke minister ba. Ou bole hega, ou hega Ruben Ravensberg hega. Algemene directeur Hega Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBBK, geen andere keuze heeft dan een ontslagverzoek tegen hem in te trekken. Suropawiru snijdt zichzelf in de vinger en moet ook zijn Excel eigen braksel inslikken. Toraf en Swaibole Hega, GBBK minister. Bolle Hega Ravensberg ke eerder voorgedragen voor ontslag. Oké, man, ontslag de we. Orom, de Malayu, man, je pint her het op hier tegen Pariake, man, Hega ontslag kere. Obole Wana, directeur door ontslagcommissie werd gehoord. Per schrijver 21 mei, Suropa weer een verzoek. Echter officieel ingetrokken. Doen Ukalerha. Obole intrekkelijke discussie over salarisverhoging en missief. Volgens Ravensberg. Ravensberg stelde de minister dat hij van de vorige minister salarisverhoging had gekregen zonder dat daarvoor een missieve was opgesteld. De appanapan salaris te isab chalhalu bhaiya jaise mangyo. Ik er bare ma Mathura ka bole he. Aur Mathura bole hoofdraad moet volgende wet zelf aanwezig zijn bij de hoorzitting. Aur hoofdraad te door se hun ap het terras pe bait ke. Aur saag advocaat se ladwawe he. Aur hiya isab OM सब कोई लड़े हैं पार्लियामेंटारी कृष्णा मथुरा से बोले हैगा फाइनेंशियल के क्लीमर हुदरात एक्स मिनिस्टर हैगा फाइनेंशियल के जो चोरी करके भगल है पर सोलक अन्वेषक हुसैन बेरे देना एंड मैंने हेलमत ईस में दी से मेफ्राउ और यहां भी बतावे हुदरात वाज नीट लाइफलक अन्वेषक एंड वेयर वर्टेगनवर्डर डोर से एडवोकेटर डोर द राजमानर वेयर द फ्राग अपकोवर्पन. In hoeverre de justitie, juridische en formele procedures zijn gevallen, or je bhagal hai abbetak, or je bhagal hai bhaiya lukaan hai, to ikke koi pakar na paave hai, hamare janta, ye baat hai. To ab chalo bhaiya, hum aap log ke lekar chalte hai Iran ki or, Iran se oppers leiden hai, बोले हैं अनफाल फेस अमेरिका के बोले हम लोग के रेक्ट रिएक्शन करेंगे नतीजे तोर देश में ये कोई दागे दान मुझे ये साल फर्दीड़ खे तो यहाँ यही बात बोले हैं का बोले हैगा बोले कि वेलकम और बोले हैगा वे हैव रेक्ट ओम तो रिएक्शन en dat klopt allemaal mensen de तोर देश में कोई आएगा लड़े. Oh ja, wat Iran heeft een man excuseerd vanwege vermoedelijke spionage voor Israël. Meldt het
persbureau. Aur ego admike maar haar is Iran bole Iran ke Irak en Israel ke spion raha. Iranse revolutionaire garde zegt een Amerikaanse drone uit de lucht hebben gehaald. Het zou gaan om een drone van het type MQ-9 zoals op de bovenstaande. Ja, wat ik ego in Amerika ke drone gereisega. Iran willen de VS bewegen met de dag verder en verder weg van zijn voormalige status, zegt hij. Iranse opperste leider John Higa willen Iran heeft recht om te reageren over de schending van staakt het vuren. Oro willen Motabo Kamenei willen hij. Golfstaten niet langer met een skilled jagra zullen zijn voor Amerikaanse militaire basis en dat de VS geen veilige haven meer in de regio zal hebben. Iran het recht heeft te reageren op enkele schending van de Amerikaanse staat te vuren. Op volgens de staatsmedia heeft Iran de Amerikaanse MQ-drone neergehaald, mensen. Dat weten jullie allemaal. We gaan naar een liedje, mensen. Daar komen we straks weer. Weer terug. Ego Tropic Salsa Cuban, que guita maploco, sunaenge.

मेरा दिल ही कितना पागल है, ये प्यार तुम्ही से हम करते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना सुरीनाम की समाचार को लेकर। दोस्तों सुरीनाम में भैया देखो क्या हो रहा है, बोली जोनी आज तू रूफन उफन के बारे में ना बताइले, जरा रखेरे अखेरे के बाद बतावे, जैसे रहते दोस्तों आपको बताते रहते हम। अब देखो यहाँ हुआ क्या है, इंस्पेक्टर भैया एगो होफ इंस्पेक्टर सोना ओना पहन के गैला त्रेम करे भैया, सवेरे सवेरे गैला जॉगिंग करे, चले दौड़े गैला, और दौड़ते दौड़ते बेचारा ऊपर तो होफ इंस्पेक्टर है, होफ इंस्पेक्टर है, गैला जॉगिंग करे, बस उतरे में भैया जॉगिंग अतवार अतवार के बातचीत है, आई जॉगिंग करत ना कसाबा होलो वेख में भाई, हुई दौरत ना सोना होना पहिर के कोई जाए जॉगिंग करे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर गैला जॉगिंग पहिर के और दौरे भैया उतरे में भाई सबन ओके पटकीस है, ओके पटकी से भैया ओकर केती हांगर अंगूठी ताहत निकारी से, और जो निकारी से जबरदस्ती रो फरवन तकाली वही ना निकाय से दांते काटी भी एक के खूब भैया, और इंस्पेक्टरवा के बड़ी मार मारी से खूब में सांदल करी से इंस्पेक्टरवा के, और वही मट्टी में दबाए रहो दो खरन खुदरुक, और भैया हाथ गोड़ी सब फूल गए हैं, इंस्पेक्टर के हाथ उन फूल गए हैं, और जितना लिंकर हाथ में दांते फाटे सब काटी से भैया, और ले के सब चोरन फरार हो गए हैं, बताए गए हैगा ना द रोस लुखन द फरदाख्तन ब्रोम फिच पे पेल भागल है भाई, और चल गए बेतक तो ना पकड़ान है। तो सोचो हम लोग के देश में सुरीनाम देश में दोस्तों सुरीनाम देश में जो इंस्पेक्टर की ये चोर रूफ कर ले तो हम लोग कौन खेत के मुल्ली है भैया, हम लोग के साथ का हुई। अब देखो भाई एक ऑटो अपरे के एगो ऑटोमोबाइल्स अनखिफ्त करी से बोले पोखिंग तो दोचला है, अब बोले दिन सेल्फ क्लाक इन तेखे को पुलिसी आदमी पुलिसी को पर क्लाक करी से गा ये रमिया ऑटोमोबाइल्स तुआ बोले इसको तू ओकर साथ का करी से एगो 28 यार के ऑटो ऑटोमोबाइल्स थे ओ सदिचर अतवार के रात के मेल्द करी से सिपाही में अनखिफ्त करी से tegen hem had gedaan wegens poging tot doodslag. Volgens wordt de VS een vriendin help met de verhuizing. Ik vriendin ke help kunnen trahan. Vroeger kreeg ze waren bezig goederen uit een huurwoning te verwijderen en weg te brengen. Vroeger kreeg het armia. Op het erf bevinden zich twee woningen waarvan de politieman in een van de huizen woonachtig is. Operatie met twee gerraan. Een ger waar mijn sipahie bij huur kreeg het trahan. Volgens VS had de politieman zijn voertuig. Is er parkeerkele रहा दत है एर मुइलक लंग्स कौन रहेदन बोलेगा ओकर बगलियास न पास हो बिस्को तो इतना मुइलक बहुत हुआ पार्केर कर ले रहा बोले मैं मुइते बोले हम फॉर बैई भाईली है फरक्लार द Verklaar verder dat de politieman vervolgens hem aankwam en de zijspiegel van het voertuig vernielde. Bole, maar auto kan zijspiegel toerisje. Bole, hij maakte daar op dat moment geen probleem van. Bole, hem kutje naar bolle he. Maar reis rechtstreeks naar de politiebureau leidde 9 met hem geili he. Bole, aangifte kalli he. Intussen had de politieman al melding gemaakt dat de automobilist op hem zou zijn ingereden. De politieman bleef daarbij ongedeerd. Bole, maar ऊपर उचलाई से बोले हमें कुछ ना भैले बोले उल्टे आउ करी से अनगिफ्ट ना तो सैन खोर्ट वर्थ है सोंदा हिन गसोंदन द साक में बत्रेकिंग तो फर्नीलिंग फान ए फोर्टेक फान ए फेस इस ओवर गद्रांग अफदेलिंग फान और अन अंडरसुक पर्सनल साक में अब एकर बारे में गईल है तो सिपाही जे अपर क्रिमिनल खदराख के करीगा भैया तो हम लोग के देश के स्केकर ऊपर तो बाउ करिए भैया उसको तू जे आदमी हुआ रहे तो सोचे हमारे बराबर और कोई है ये ना है, हाँ सोचे हमारे बराबर कोई है ये ना है।
आप लोग को बीते हुए दिनों में बताए थे कि SLM के मोतरवा में 500 किलो कोकेन सब लुकवाए रहा जाने न मौसा कोनो पकड़वा दे रहा ते एकर बारे में कितना आदमी पकड़ा रहा है। एगो फैफन दर तक यार के शीर्षांत भी पकड़ा रहा, एगो त्वेये फिर तक यार के शीर्षांत और बोले हेगा अन सेफ मार्च के सखवा आन खाउद रिसर्चे पकड़े रहा मिलिटेर पुलिस पकड़े रहा और बतावे त्वे शीर्षांत वर्ड इरफान फरदाख 10 नवंबर 2022 में 500 किलो इलीगल लैंडिंग्सबान इन फालावात्रा खबीत ओना सिपाल विनी के बतिया भैया ने सिपाल विनी में रहा फालावात्रा में ओक सौदन से नाबे द लैंडिंग्स बार ऑफ द आउटकेक हेवन खस्तान में से ते इसे ताकत रहा और बोले 17 तारीख नवंबर में ड्रिक्स फ्लीट देख सो से खलान इन फालावात्रा खबीत नर आनलेन इन दार फॉर फर्ट्रॉक और खमेंग द पुलिसी इन हीडन naar de locatie om onderzoek te doen. Daar troffen de Westdienaren een illegale landingsbaan en een eenmotorige vliegtuig aan. Het toestel was gestript en had beschadigde vleugels. Een drugshond gaf een positieve melding in de vliegtuig. Op 16 Satsorago, een baril. Een 50 liter kerosine op er aan. Ongecontroleerde politie al voertuigen. Een paar bolle 500 kilo pijzen bij je chow zo naar haar hoe. Toen ja, nee, Suriname gehaald toe. Biswaas naar regie, bhai. Daar gaat het om. Hem beschuldig koeik naar Karila. Lekin biswaas naar regie, henani. Karen ki je hoe druk je pakra he. Te ketra bolle pisan jarja he. Bolle druk vogel. Sko tu look ke ghar me tu dikhe kon kon auto chalawe bhaiya. Te bolle i paiswa. Tu paisa se kamaile bate. Mehnat se kamaile bate. Ki druk ke paisa se kamaile bate. I sab Suriname me hoe bhaiya. Aap dekho ego brandweer man. Tevens beveiligers man. Verlies dien wapen. Na de verkeersongeluk. Arenen kari se ko brandweer ke enemy aur beveilig ke bhi enemy raha bas sab ne kar pistol ve chori kar li bhaiya to socho hamara desh mein kya ho raha hai ab be bataye sipahi ke bare mein bhaiya siraden en geld buit gemaakt en bij een inbraak woonde een hoofdinspecteur Suriname mee, bhaiya. Okar ghar mein chor ghusal hai, Justine straat mein. Aur hoofdinspecteur ke ghar mein ye ghusal hai. 3 baje to on the dikis ke okar slap kaman mein okar kalai sab tutal hai jema oma sona ke gana raha bhaiya paisa raha blang rahi ke do ki mente raha the inspector ghar mein kalai dhare bhaiya tab suniyo oma se ka gail hai the dad is for share than the kalai aur oma se le gaye 1 million srd ke sona two go patron holders le gaye hai aur fir 3,700 एरो ले गए हैं 5,800 अमेरिकन डॉलर ले गए हैं एंड अंदर डॉक्यूमेंटल फॉल्स द अनकेव बद्राग द टोटल स्कार फ्रॉम 50,000 अमेरिकन डॉलर तो बताओ इंस्पेक्टर वाक सलारस कितना है जो 50,000 अमेरिकन डॉलर की चीज वो घर में धरी से एकर बारे में हुआ ना जाए अंदर सुख हुए खाली चोरवा के जाए पकड़े जो ने इंस्पेक्टर वाक मालवा फिनो के पाई है एंड वर्क वर्क अन ऑस्पोरे अन होनिंग फॉर फ्लुक्टक voor vluchtige mensen to sipahi ke ghar mein itra itra cheez inspector ghar mein 50,000 american dollar ke aur gahana mile hai to hum

हमारे पता है न्यूटन स्ट्रैट न्यूमरो 25 और देन हाग शेहम। इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं। दोस्तों अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोख लिखाई थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एथर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुन सकते हैं। www.fm.nl।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

मसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गाना, इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म, जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेक ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे। मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था
2: क्या?
1: क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुराने गाना से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पे बहते हैं, और हम उस देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, जो अगर जो आप मुकेश के सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफ़ी जी के, रफ़ी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में क्या होता है, इशारों इशारों में तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना, तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाना क्या आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 55 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नेक दिन 5/5 का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुरानी गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानो राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण फिल्म का नाम है पतिता का। ये फिल्म है दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में। इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है अलबेला का। ये गाना है हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे और नाम बहुत बड़ा है कितरे को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

और मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है, और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती है दोस्तों। और गलतियाँ तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों, मुझे नींद न आए, आपको आते हैं, आपको क्या आते हैं, अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कुछ शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं और ये दर्द के बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोई पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तुम मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेर आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं कि कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मींस रोगेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों कि कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे, प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए। और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं, प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोग लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो। और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है। और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जो लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहां पर बैठ जाता है। और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहां पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों। और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हो गए भैया ये हंसते हुए, सिर्फ प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए, नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इश्क के जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेस्टमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते हैं। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों फिल्म के नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

और दोस्तों टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपकी तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है उससे बचना।

दिन हो गया हमने कुछ गजल गीत आप लोग को नहीं सुनाए हैं, और आज हम आप लोग को कुछ गजल सॉन्ग भी सुनाएंगे। दोस्तों आओ मिलकर पहले ये गीत को सुना जाए। इन आंखों के मस्ती क्या है, दिल चीज क्या है दोस्तों, और ये दिल चीज क्या है, आंखों की मस्ती क्या है, आओ मिलकर सुना जाए। आ जा रे ओ मेरी।

तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आप लोग को हम यानी कि आंशी कुछ गजल सॉन्ग भी सुनाएंगे कि कहते हैं खुशियों को खुशियां तो कब से रूठ गई है, खुशियां तो कब से रूठ गई है, काश गमों को भी किसी के नजर लग जाए, किसी को नजर लग जाए, बिल्कुल तुम सा और तुम्हारा, बिल्कुल तुम सा और तुम्हारा लगता हूँ, कभी कभी मैं खुद प्यार लगता हूँ। और हम चलते हैं अगला गजल की ओर, ये और बात है। गजल का गीत अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास का ये सॉन्ग है।

ये और बात है, और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल मनहर उदास का। ये गाया हुआ गजल सॉन्ग है, ये और बात है, ये और बात है। कौ कहते हैं मुझे देखकर उसने फेर लिया चेहरा, मुझे देखकर उसने फेर लिया चेहरा, तसल्ली हुई चलो पहचानते तो है, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएंगे जरूर, अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएंगे जरूर, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको, कौन मुझको चाहेंगे। हम चलते हैं अगला गजल की ओर। ये गजल है ना, गीत है ना, कोई मूवी अलग अलग का, किशोर जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है।

और किसी किसी बेबसी ने और मारा। दोस्तों हम और आगे को बढ़ते हैं कि कहते हैं, तुझे तू मिल गई होंगी नई साथी, लेकिन तुझे तो मिल गई होगी नई साथी, लेकिन मुझे हर मोड़ पर तेरी कमी महसूस होती है। मुझे हर मोड़ पर तेरी कमी महसूस होती है। मैं अपनी राह में दीवार बनकर बैठा हूँ, मैं अपनी राह में दीवार बनकर बैठा हूँ। अगर वो आया तो किस रास्ते से आएंगे? तो हम चलते हैं तो गजल सॉन्ग।

0: और वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। और कहते हैं बहुत मान था जिन पर बड़ी बेमान निकला वो। उसने आंसू भी मेरे देखते थे। उसने फिर भी कहा मुझसे जाना है। तो प्यार भरी शायर भी आप लोग को हम सुनाते हैं दोस्तों गजल के साथ। तुम्हारी साथ ये मौसम फरिश्ते तेरे तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है। तुम्हारी बात ये मौसम बहुत सतुखा है, सूख गया है। तो हम चलते हैं जगदीप सिंह का ये सॉन्ग है।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

और जगदीप सिंह, आशा भोसले और करोड़ों का दिल चुराने वाली नई तिरगी लता जी का ये गया हुआ सॉन्ग था दोस्तों। तेज हवा ने मुझसे पूछा रथ पे क्या लिखते रहते हो। काच कोई हमसे भी पूछे रात गई तक क्यों जगते हो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं वक्त बदलने से कहाँ दिल बदलते हैं, वक्त बदलने से कहाँ दिल बदलते हैं। आपसे मोहब्बत थी, आपसे और मोहब्बत है। तो ये सब गीतों का सॉन्ग आज गजल आप लोग को हम और सुनाते हैं। आओ मिलकर एक और गजल सुना जाए।

0: होठों से झूलो तुम और मेरा गीत अमरी कर दो। मैं दरिया से भी डरता हूँ, मैं दरिया से भी डरता हूँ, तुम दरिया से भी गहरे हो। कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतना अच्छे क्यों तुम लगते हो। तो दोस्तों आज कुछ प्यार भरी यानी कि गजल सॉन्ग्स आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं शायर खुशी का दौर, शायर खुशी का दौर भी आएगा एक दिन, गम भी तो मिल गया, गम भी तो मिल गए थे तमन्ना क्या बेगैर। तो एक और सॉन्ग सुना जाए।
1: जहर खाके मरना था इतना नहीं किया, हमने तुम्हारे प्यार में क्या क्या नहीं किया, तुमने वफाएं बेच के खुशियां खरीद लीं,

और कैसी समाऊं तेरी यादें और दिल में क्या क्या होता है, ये गजल आप लोग को सुनाते हैं कि शायद खुशी का दौर भी आएगा एक दिन, गम भी तो मिल जाएंगी, तमन्ना क्या बगैर अपनी शहर के सब लोग से मेरे खातिर क्यों उछालते हो, कहने को रह गया हो तो दिल में फिर भी कितना दूर, कह दो ये भी। और हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, और वो गजल का सॉन्ग है।

और मैं भी परेशान हूँ। दोस्तों आप लोग के लिए आज हम कुछ गजल के गीत सुनाए हैं। हमें ये आशा उम्मीद है कि आप लोग को हमारा गजल सॉन्ग्स अच्छा लगा होगा।

से आप सुनेंगे सितारों का सफ़र। आज का प्रोग्राम है सितारों का सफ़र, में मैं गसल का गायक या गसल का फनकार पंकज उदास के बारे में कुछ बातचीत करूंगा। पंकज उदास पैदा हुआ सीफिक मैनी इन फैतक राजखत में, परिवार बॉम्बे से बॉम्बे चला आया और म्यूजिक अकादमी में तबला बजाने को सीखा पंकज ने। पंकज को बचपन से गाने का बहुत से शौक था। मास्टर नवरंग से ये संगीत सीखा। उषा खन्ना ने पंकज को फिल्म कामना में गाना गाने का एक मौका दिया, लेकिन ये फिल्म कामयाब नहीं हुआ तो पंकज ने फैसला किया कि वो फिल्मों में बहुत कम काम करेगा और पंकज शुरुआत किया गजल गाने में और उर्दू भी सीखा। बड़ा भाई ने कहा पंकज से कि अगर गजल में कुछ करना है, कुछ करना चाहते हो तो मेहंदी साहब और बेगम अख्तर को सुनो। पंकज साहब ने बहुत से पंकज जी ने बहुत से गजल पेश किया है, तो बहुत से गजल गाया है और सभी गजल में से एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है, तेरी निगाहों से, पंकज उदास की आवाज़ में।

गजल का फनकार पंकज उदास कनाडा को चली गई और वहाँ जाकर उन्हें महसूस हुई कि यहाँ के लोग को हिंदुस्तानी म्यूजिक कितना पसंद है। फिर पंकज ने मन बना लिया कि ये अपना देश में अपना नाम करेंगे और काफ़ी टाइम गजल सीखने के बाद ये वेसन में काफ़ी गजल की कॉन्टेस्ट किए नीखंतिंग तख्त और नीखंतिंग तख्त में अपने पहला गजल के आलमिन तैयार की जिसका नाम था आहट। फिर उसके बाद वो एक गाना तैयार की एक गजल और वो था चिट्ठी आई है। इस गाने से ये तुरंत पॉपुलर हो गया दोस्तों। एक बार पंकज उदास एक बेनेला से फ्लिक था तो एक शो देकर घर जा रहा था और जो फ्लिक थे जब प्लेन में बैठा तो राज कपूर जी वहाँ प्लेन में बैठा था तो राज कपूर के जाकर उनका पाँव पकड़ लिया पंकज। तो राज कपूर ने कहा नहीं नहीं पंकज जी ऐसे ही मत करो आप एक बड़ा गायक हो। तब पंकज ने कहा नहीं नहीं मैं कोशिश करता। तो राज कपूर ने कहा आपका गीत जो है चिट्ठी आई है वो एक हिट एक बड़ा सॉन्ग हो गया है। तो वहाँ पर जाकर पंकज उदास को महसूस हुआ कि कितना तारीफ किया जा रहा है मेरा ये गीत पर। और ये गीत दोस्तों मैं सोचता हूँ ये गीत हमेशा पॉपुलर रहेगा। इसलिए गीत में जो बातें हैं मैं गीत को सेलेक्ट करके रखा लेकिन आज नहीं पेश करूँ इसलिए कि गीत बहुत लंबा चौड़ा है। एक दूसरा गजल मैं आपके लिए चुन के रखा हूँ और मैं भी पेश करूँगा। तो चिट्ठी आई एक पॉपुलर हिट हुआ। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ गजल गाया जाता था वहाँ वहाँ पंकज उदास हमेशा उपस्थित होते थे और उनका गाना भी हमेशा चलता था। पंकज उदास के आवाज़ में एक दूसरा गजल आप सुनेंगे। पंकज उदास दोस्तों आप जानते हैं वो सुनांदेश भी अपन शो दिया है और हॉलांदेश में भी आकर अपन शो कितने कई बार मैं सोचता हूँ दो बार वो सुनांदेश गया है।

वाह वाह वाह वाह, क्या तारीफ है, एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। गसल का फंकार पंकज उदास को पद्मश्री का पद्मी मिला, दियार तुई जैसन शस्त्र में पद्मश्री का ऑनर स्काइडिंग। और पंकज उदास का पिता का नाम, उसका पिता का नाम थे खुशीदास उदास और माँ का नाम थी झूठी झीती झीती बन। पंकज को दो भाई है जिन्हें जिनका नाम है मनहर उदास, वो भी एक गायक है। और दूसरा भाई का नाम है निर्मल उदास, एक गजल गायक। और बीबी का नाम है फरीदा उदास। इन दोनों को इन दोनों को दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम है नयाब उदास और रेवा उदास। दोस्तों दुख की बात यह है कि 26 फरवरी 2024 को 72 साल के उम्र में पंकज उदास की मृत्यु हो गया, दुनिया को छोड़ चल गए। और बहुत दुख की बात है दोस्तों, पंकज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम जब लिया जाएगा बड़ी गर्व से लिया जाएगा। उसका दाह संस्कार परिवार रिश्तेदार के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के तमाम भी सितारे मशहूर थे वहाँ पर।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। महेंद्र कपूर का लाइव सॉन्ग आप सुनेंगे।

महेंद्र कपूर पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में बदल जाए अगर माली। दोस्तों जॉय मुखर्जी सायरा बानू के साथ फिल्म शागिर्द में काम किया। आप भी फिल्म देखे होंगे तो इस फिल्म एक बहुत जोक फिल्म था दोस्तों, इसमें बहुत हंसी था और जॉय मुखर्जी और सायरा बानू अच्छी तरह से इस फिल्म में काम किया। और इसी फिल्म का एक सॉन्ग है नाइटिंगेल, लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुनेंगे।

और आशा पर सायरा बानो दोस्तों दिलीप कुमार का बीवी सायरा बानो के साथ फिल्म शागिर्द का ये सॉन्ग अभी आपने सुना। धर्मेंद्रा दोस्तों, धर्मेंद्रा और अपन दूसरा बीवी, जी हाँ लोग कहते हैं दूसरी बीवी, तो मैं कहा दूसरा बीवी, अपन दूसरा बीवी हेमा के साथ वो काम किया फिल्म चरस में। अभी गीत के बाद मैं कुछ धर्मेंद्र के बारे में आपसे बताऊंगा।

0: दोस्तों धर्मेंद्र, आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र का तबीयत जो बिगड़ा, तो धर्मेंद्र अपना दयाद जो है, जितना धन दौलत है, वो अपन दो बीबियों के अंडर बांध दिया दोस्तों। तो एलक है, एलक मीन्स दोनों बीबियों का पूरा बांध दिया। और धर्मेंद्र का दौलत जो है 560 करोड़ रुपए। तो धर्मेंद्र अपना पहला पत्नी और हेमा मालिनी को दोनों को 200 करोड़ दिए। तो हेमा मालिनी को 200 और अपने पहले पत्नी को भी 200 करोड़। और अपनी चार बेटियां, धर्मेंद्र को चार बेटियां है, दो हेमा के साथ और दो बेटी है प्रकाश कौर के साथ। तो चारों बेटियों को 107 करोड़ दे दिए और 60 करोड़ रुपये। और अपना फार्म जो है, अपना फार्म हाउस जो है, वो दोनों अपने ये अपने दोनों पत्नियों में बांट दिए, ये लगा। और बच्चे सोनी दियोल और बॉबी दियोल दोनों को अपना प्रोडक्शन हाउस दे दिया। और धर्मेंद्र को कई शहरों में रेस्टोरेंट है, उसका कीमत लगभग 5 करोड़ है। और दोनों भाई के हिस्से में ये सभी रेस्टोरेंट जो है, ये दोनों भाई के हिस्से में आया। और धर्मेंद्र को चार बड़े बड़े बंगले हैं जो अपने दो बीबियों को बात दिए है दोस्तों। तो देखिए धर्मेंद्र अपन दो बीबियों को कितने प्यार करते हैं कि लड़कन को कम दिया है और अपन बीबी को ज़्यादा दिया है। इसलिए कि बीबी तो लड़का होता है ना, जब बीबी नहीं है तो लड़का कैसे होगा। जॉनी तू क्या सोचे है ना, सही बात है कि नहीं
1: भैया? जब मसीह रहना है वो तो कैसे चले
0: वही बात है जॉनी, थैंक यू।

हम यार है तुम्हारे। यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहड़ी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में। तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था। लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों, बीबी जोगीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलीला, यहाँ देखिए उसे फंसे है, ओके मिथुन भगा ले गए रहा। तो इसी कारण मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

जा रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। बप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी, सभी के आवाज़ में आप सॉन्ग सुनेंगे।

संजना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं 66 तक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना एक पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं, ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

Ja, Pika, heb je steeds een vaarhoorn in de stand radio op zo'n hippogram, Gitoka Sangam, Rajan Kesat. Dunia me logoko dhoka kabi ho jata hai. Mijn susta ho dunia me harik insan ko dhoka jo ek bar hoga. Ji ha, dosto, harik insan dhoka dunia me jo ek bar khaya hoga. To R.D. Burman ka song hai, Rajesh Khanna Mumtaz film mein kaam kiya, aur aap jante hai, superstar Rajesh Khanna. उन दिनों में एक रजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़का से आपर फिल्म पेश करते थे. अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता, लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था. सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं, एक दूसरा अलहदा तरह के फिल्म है. फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज, तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया एक टॉप एक्टर से भी थी उन दिनों में. रजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था.

दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायकी है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाजों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, यह पागल रखा पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर के आवाज़ में ये सॉन्ग।

लग जा गले के बाद दोस्तों, फिल्म दीदारी यार। फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया, और ऋषि कपूर किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया। फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो 4000 फिर दर्शन के बातचीत था एक इस फिल्म में गीत गाना गाने के या गाना पेश करने को। तो राफी साहब को 4000 मिलता, किशोरदा को भी 4000। फिर भी जो ये फिल्म बनते बनते कई साल बीत गया। जब फिल्म तैयार हो गया तो जितेंद्रा ने अपन मैनेजर से कहा, जाओ किशोरदा से बातचीत करो, कितना पैसा चाहिए उन्हें देने के। तो किशोर कुमार ने कहा, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो जाकर जितेंद्र से कहा, जितेंद्र 20,000 रुपये दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया, और फिर 20,000 दिया, जाओ इन्हें राफी साहब के दो दे। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया, तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्रा और राफी दोनों दोस्त थे, और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब जीवित था तब तलुक जितेंद्रा और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते हैं किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी, उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ दो बार हुआ, लेकिन किशोर तुई माल दे तो चाहता है एंगल तुई माल फिर दर्शन आख दर्शन लेवे के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है किशोर कुमार एंड लता, दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे।

यात्रा में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जब चटनी का नाम लेता हूँ चटनी सॉन्ग, तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। That's dance.

ग्रेट मेमोरीज, ग्रेट मेमोरीज, ताम ताम भोजपुरी सॉन्ग चलेगा। एक हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो, वह प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ, साहब यूसुफ भी बैठा हुआ है।

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान रवि सिंह एंड नादिया सिंह दोनों के आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

आपकी बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग सॉन्ग फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा निहरी सीवन शास्त्र के बात है जब ये सुनाम देश आया और उसी समय पर एक बार बना था जिससे पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पता पता।

0: मरियम मकेबा के बाद हिंदी बबलिंग मैशअप धीरज सक्सेना एंड नाथान शो टाइम शो टाइम शो टाइम दोस्तों
1: 6 million ways to die choose one

0: क्या हुआ तुझे?
1: अभी आप सुन रहे थे तन्हा जी आना जाए फ्रॉम द मूवी टॉम डिक एंड हैरी से हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे हिमेश रेशमिया जी। सोनू निगम आपको सुनाने वाले हैं जूही बब्बर के साथ में काश आप हमारे होते हैं।

काश आप हमारे होते, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी काश आप हमारे होते द टाइटल हमने पेश किए हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। फ्रॉम द मूवी धूम से हम पेश करते हैं सुनने वालों दिल बोले शिकदुम शिकदुम। शान और श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

शान और श्रेया घोषाल की आवाज में भी आप सुन रहे थे दिल बोले शिकधूम फ्रॉम द मूवी धूम से हमने पेश किए हैं। जिंदगी की राह में कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर उनकी यादें हमेशा दिल में बसी रहती है। जरा जरा टच मी फ्रॉम द मूवी रेस से आप सुनेंगे।

मोनाली ठाकुर आपको सुनाने वाले थे जरा जरा तचमी तचमी तचमी फ्रॉम द मूवी रेस से हमने पेश किए हैं योर माय लव फ्रॉम द मूवी पार्टनर से हम पेश करते हैं बहुत मुश्किल होता है दर्द हंसकर बर्दाश्त करना

फ्रॉम द मूवी पार्टनर से हमने पेश किए है माय लव जाने जा योर माय लव। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। हम शकल्स हैं फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते कॉलर ट्यून।

अभी आप सुन रहे थे कॉलर ट्यून। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं और बीवी नंबर 1 से हम पेश करते हैं इश्क सोना है।

अभी आप सुन रहे थे इश्क चांदी है, इश्क सोना है। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ऐतराज से आप सुनेंगे अदनान सामी और सुनीरी चौहान आपको सुनाने वाले हैं गीला गीला गीला गिल गीला गीला।

रहे थे गिला गिला गिला गिल गिला गिला मिला मिला मिला कोई मिला मिला फ्रॉम द मूवी ऐतराज से हमने पेश किए हैं मेरी यार की शादी है इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जाके जाके अरमा है जाके जाके हम

अभी आप सुन रहे थे जागे जागे अरमा है जागे जागे हम। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं आपको सुनाने वाले हैं शान सुनिधि चौहान और के

0: शांत सुनिधि चौहान और के आपको सुनाने वाले थे देखो नशे में, मूव योर बॉडी नाउ फ्रॉम द मूवी किस्मत कनेक्शन।
1: Now listen, get up, that's right.

कंठ हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

का यज्ञिक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं आपका आना दिल धड़काना फ्रॉम द मूवी कुरुक्षेत्र से आप सुनेंगे।

स्वर्ण मूवी कुरुक्षेत्र से अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू आपको सुनाने वाले थे। अब तेरे दिल में हम आ गए तो फ्रॉम द मूवी आरसू से आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक।

आप सुन रहे थे तेरे दिल में हम आ गए, तो फ्रॉम द मूवी आरसू से हमने पेश किए है कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। जरा सा हम देखे, जी हाँ, उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं तेरा दिल मेरे पास रहने दे।

तेरा दिल मेरे पास रहने दे। अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मुस्कान से आप सुनेंगे वो हो तुम।

सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे वो हो तुम, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, फ्रॉम द मूवी तुम बिन से आप सुनेंगे, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं।

पुनीत नारायण और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम बीन। तुम्हारी नियत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करो जिससे तुम्हें कोई चीज की उम्मीद ना हो, क्योंकि इतना प्यार करते है तुम्हें हम सनम। फ्रॉम द मूवी क्योंकि

फाहम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रा

बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूं, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान। सपने तो हम सबको जरूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सभी जानकारी है, जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था स्वप्न विज्ञान, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और आगे आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक कारण कि जो हमें सपने आते हैं उन सब का प्राकृतिक कारण क्या है। प्राकृतिक कारणों के अनुसार कफ पित्त वात का परिणाम अधिक होने पर मानव को अलग अलग स्वप्न दिखाई देते हैं कि कई बार जैसे हम बीमार होते हैं उसके अनुसार भी हम सबको सपने आते हैं।

सब प्रभावधीन, सफेद चीजें, गुफा, तारों का समूह, मेघमंडल, स्फटिक मणि, संगमरमर, दिव्य पदार्थ, फल, यज्ञ सामग्री, यज्ञ मंडल, सुंदर आभूषण। अगर कफ की बीमारी हो तो आप सबको ऐसे सपने दिखाई देंगे ज़्यादातर। वात प्रभावधीन, ऊंचाई पर चढ़ना, आसमान मुक्त संचार उड़ना। पित्त प्रभावधीन, आग, पीली पृथ्वी, तक्षिण शस्त्र, जलती दिशाएं, अशोक वृक्ष, आघात गिरना, नाश्ता करना, क्रोध करना। दो स्वप्नों का परिवार।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दुःस्वप्नों का परिहार। लाल चंदन की समिध्या घी में डुबोकर 1000 गायत्री मंत्र का हवन करना। दूसरा, शुचिमूर्त होकर पूर्वाभिमुख आसन होकर अच्युत केशव विष्णु हरि सत्य जनार्दन हंस एव नारायण इन 8 नामों का उच्चारण 10 बार करें। तीसरा, भक्ति भाव से विष्णु नारायण कृष्ण माधव मधुसूदन हरि नहरि राम गोविंद दधिवामन इन 10 नामों का 100 बार जाप करें। चौथा, निष्ठापूर्वक 1000 श्री कृष्ण का जाप करें। पांचवा, शामी अद्भुत वनस्पति पूजन करें तथा सोने से पहले शामी सिराने रखें। छठा, सूर्योदय से पूर्व पूर्वाभिमुखी होकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। सातवां, शुचिमूर्त होकर ओम नमः मंत्र के साथ शिव दुर्गा गणपति कार्तिकेय दिनेश्वर धर्म गंगा तुलसी राधा लक्ष्मी सरस्वती जी का जाप करें। आठवां, ओम ही श्री काली दुर्गति नाशिने महामाया स्वाहा का 10 बार जाप करें। नौवां, ओम नमो मृत्युंजय स्वाहा का 10,00,000 जाप से साक्षात मृत्यु लौट जाती है। दसवां, प्रातः प्राणायाम करें या तगर के हरे पत्ते चबाएं। सुनने वालों, ये सब था दुख स्वप्नों का परिहार, यानी जो दुख वाले सपने होते हैं उनका निवारण कैसे करना चाहिए।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। स्वप्नों के प्रतीक, स्वप्न मानव जीवन को ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम वरदान है। यह देवी वरदान चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही मिला है, और ये खाली वरदान इंसान को ही भगवान ने दिया है, जो कि उसके मानव जीवन को सर्वोत्तम निधि कही जा सकती है। स्वप्नों का आधार काम भावना स्थिर की है। उनके अनुसार वास्तविक जीवन में जितने भी उपकरण हैं, वे दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो पुरुष चित प्राकृतिक और दूसरे स्त्रियोचित। पुरुषोचित प्राकृतिक, जैसे आप सब जानते हैं कि भगवान ने भी स्त्री और पुरुष दो जीव बनाए हैं, तो उसी के आधार पर शास्त्र विज्ञान भी अपना अलग अलग नीति देता है। पुरुषोचित प्राकृतिक, अस्त्र शस्त्र पुरुष वस्त्र मशीन नक्शा पुल चाबी लकड़ी पेड़ संदूक छाता आदि। और स्त्रीयोचित प्राकृतिक है दरवाजे ताला गुफा टोकरी कपड़ों के उपकरण बर्तन मशीन आदि। यह एक जीव की सृजनात्मक शक्ति का नमूना है। सिंह कभी झुंड में नहीं रहता, वह अकेले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सुनने वालों, जैसे संत कबीर जी ने कहा है कि हीरो की ओवरी नहीं मूल्य गिरा नहीं पाती, सिंहों का लहड़ा नहीं साध ना चले जमाती।

हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, क्यों आती है नींद हमें, कि हम मनुष्य लोगों को कभी ज़्यादा नींद आती है, कभी कमती नींद आती है, इसका भी कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता होगा ना। यदि हम जागते हुए भी लेटे रहें तो भी हमारी थकान दूर हो जाती है, वैसे भी सोते समय हम पूर्णतः स्थिर नहीं रहते, हिलते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, जो मांसपेशियों की कसरत कराने के लिए करते हैं ना, ना कि उन्हें आराम देने के लिए। अतः हमारे शारीरिक नहीं अपितु मानसिक आराम की अवस्था होती है, परंतु सोते समय मस्तिष्क सुस्त नहीं वरन अधिक क्रियाशाली रहता है। सुनने वालों, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग और ज़्यादा काम करता है, और हम सोचते हैं कि शायद हम सो रहे हैं तो दिमाग भी थोड़ा शांत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम काफ़ी समय तक अकेले रहते हैं तो हमारी नींद भी काफ़ी घट जाती है, यानी जितने कम लोगों से हम मिलते हैं उसी अनुपात में हमारी नींद भी घट जाती है। वैसे हम अपने जीवन को एक तिहाई से अधिक भाग सोने में ही बिता देते हैं। नींद कई रोगों के निवारण की रामबाण औषधि है।

सुनने वालों, यह है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सामूहिक स्वप्न। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी अपनी समस्याओं को सुलझा

बढ़ाने के लिए मिलकर स्वप्न देखते हैं। न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अपने सपनों को व्यक्तिगत नहीं अपितु सामूहिक घटना के रूप में ही देखते हैं और व्याख्या करते हैं कि वो इकट्ठे सपने देखते हैं और उनका फिर आपस में बातचीत करते हैं कि हमने कौन सा सपना देखा। यूरोप के एक छोटे से गांव कार्सिका में सामूहिक सपना देखने की परंपरा आज भी प्रचलित है। वहां सब लोग एक पूर्व निश्चित विषय के बारे में उसी विषय पर स्वप्न देखते हैं जो अगले दिन सुनाते हैं।

हमारी अंतरात्मा तथा हमारे स्वप्न। स्वप्न अवस्था में मस्तिष्क को चेतनात्मक पोषण मिलता है। मानवीय मन जितना शुद्ध एवं पवित्र होगा, उसका परिणाम में स्पष्ट सुखद भविष्य एवं गुण रहस्य प्रकट करने की समर्था स्वप्नों में समाविष्ट होती है। भारतीय विद्वान स्वप्न को देवी शक्ति की प्रेरणा मानते हैं। सर्वगस आत्मा हमें अपने में कुछ आदेश देती है। यह सर्वगस आत्माएं हमें आने वाले संकटों की पूर्व सूचना भी देती है। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि कई बार सपने हमें आते हैं, जो कई बार घटना घटने वाली होती है उसके बारे में हमें संकेत भी मिल जाता है। हमारी अंतरात्मा हमारे स्वप्न के दौरान अधिक साफ शब्दों में बातचीत के अतिरिक्त और कभी नहीं करती। अंतरात्मा की आवाज़ स्वप्न के दौरान साफ सुनाई देती है। यदि हम फिर भी अपने सपनों के संदेश पर ध्यान ना दें, उन्हें समझने का प्रयास ना करें, तो हमसे अधिक मूढ़ इंसान कोई नहीं है। हमें अपने मार्गदर्शक इन सपनों को भूलकर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोग हमें सलाह दे सकते हैं, लेकिन हमारी भीतर की आवाज़ की तुलना में कम सहायक सिद्ध साबित होते हैं। हमें कोई और इतनी अच्छी तरह नहीं समझा सकता जितनी अच्छी तरह हम स्वयं समझ सकते हैं। अपनी आदतों, परेशानियों, उनके कारणों आदि को जितनी अच्छी तरह हम जानते हैं, उतनी अच्छी तरह कोई और नहीं जान सकता। सुनने वालों, वो तो हमें मालूम ही है कि सबको अपना स्वभाव, अपनी आदतें पता होती हैं, और कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं जान सकता। और दूसरा अगर जान सकता है तो वो होती है माँ। माँ बाप को पता है कि हमारे बच्चों की आदतें कैसी हैं। इसलिए हमारे सपने ही हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, हमें सर्वोत्तम मार्गदर्शन दे सकते हैं। जिस युग में लोग सपनों की भविष्यवाणी और इनके अर्थ लगाने को एक प्रकार के ज्योतिष का दर्जा देते हैं, उस काल में वे सपने संभाल कर रखते हैं। ऐसा करने के लिए ग्रीस और मिस्र में बने मंदिरों जैसी इमारतों में जाना पड़ता था। सपने देखने के उद्देश्य से गए लोग वहां जाकर कई दिनों तक आराम करते हुए विभिन्न प्रकार के व्रत, उपवास आदि रखते थे। जब सपने देखने का समय आता था तो वे सपने देखने के लिए वहीं पर सो जाते थे। सोते सोते वे सपने में किसी देवी देवता या देवदूत के आने की प्रतीक्षा करते थे। यह तो केवल विश्वास की बात है। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में भी नहीं है।

मोती युग सीप केवल गहराइयों में ही मिलेगी, उथले जल में तो केवल मछली ही मिलेगी। सपने मांगने का एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रार्थना। सुनने वालों, जैसे हम समुद्र में जाएं या कहीं भी जाएं, वहाँ पर ऊपर ऊपर मछली मिलेगी। गहराई में जाएंगे तभी हमें सीप के मोती मिलेंगे। हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, मेरी सहायता करो। आप भक्तों की पुकार सुनकर पल भर में उनकी सहायता हेतु प्रकट हो जाया करते हो। कृपा करके मुझे एक ऐसा सपना भेजने की कृपा करें जिससे मुझे अपनी समस्याओं का समाधान और सामना करने में मदद मिले। धन्यवाद। चाहे यह कोई सरल कार्य नहीं है, फिर भी प्रयत्नशील एवं कर्मठ लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। हम सब की राहें चाहे अलग अलग हों, परंतु हम सब की मंजिल केवल एक ही है। सफलता भले किसी को भी मिले, परंतु विजय तो मानवता की ही होगी। अंतरात्मा कुछ सीमा तक सचेत है और मनुष्य को गलत कार्य करने से रोकती है। जब तक शरीर में आत्मा का वास है, हमारा अस्तित्व है। और जिस पल आत्मा यह बंधन, यह पिंजरा तोड़कर उड़ गई, समझे हम भी मिट्टी में मिल गए। स्वप्न में इसे देखने का अर्थ है कि सपना देखने वाले का व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण हो गया और उसने अपनी उन्नति की चरम सीमा प्राप्त कर ली है। पुरुषों के सपनों में अंतरात्मा एक बुद्धिमान वृद्ध या महान पिता या स्त्रियों के स्वप्न में महान माता के रूप में प्रकट होती है।

सुनने वालों, ये है फहन हिंदुस्तानी रेडियो, आप सबका हिंदुस्तानी रेडियो जो आप सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम लेकर आता है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्वप्न विज्ञान। तो हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, सपनों की गूढ़ परिभाषा। इनमें शब्दों व आवाज़ की जगह दृश्यों, चिन्हों व लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इनमें हम धीरे धीरे ज्ञात अर्थों में से अधूरे, अपरिविक व अनुचित अर्थों को हटाते हुए सही अर्थ तक पहुंच जाते हैं। अगर दृश्य ना हो तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। यही दृश्य सब विचारों, बातों व संकेतों का केंद्र तथा उसका उद्गम स्थल है। दृश्य एक इंसानों के विचारों व उसके अस्तित्व का फरीक होता है, परंतु यह मौलिक कदापि नहीं है। यही दृश्य कुछ वास्तविकता तथा कुछ चिन्हों के रूप में हमारे स्वप्नों का निर्माण करते रहते हैं। यही स्वरूप है हमारे सपनों का। आमतौर पर दिन के समय हम अपने हृदय की बात सुनते हैं व मानते हैं, और हमारी भावनाओं का रात को ही स्वयं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, चेतन मन कहता है।

मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अस्वर हो सो साधु कोई एक। जागते समय भले ही दिमाग जीत जाए, परंतु सोते समय मन की ही विजय होती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों व आविष्कारों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे बहुत सोते थे, प्रायः दिन के समय भी। कई बार हमें अपने मस्तिष्क से संगणक अर्थात कंप्यूटर की तरह इनसे भी सपने व मदद मांगनी पड़ती है।

बौद्ध धर्म तथा स्वपन। इस धर्म की सपनों से पहचान इसके प्रवर्तक सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व ही हो गई थी। जब लुम्बिनी में सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व ही उनकी माता रानी महामाया को स्वप्न में एक दिव्य सफ़ेद हाथी दिखाई दिया था। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि विलियम वार्ड्सवर्थ का विचार था, जीवन एक स्वप्न है, केवल एक स्वप्न। जिस विश्व में हम विचरण करते हैं उसके अतिरिक्त एक धारा पर एक और भी अदृश्य विश्व है जिसमें देवता या आत्माएं विचरण करती हैं। यहाँ पर हम अपने मृत रिश्तेदारों के साथ मानसिक संपर्क स्थापित करते हैं जिससे वे हम पर प्रसन्न रहें तथा हमारा ध्यान रखें और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें और रक्षा करते रहें। हमारे अंतिम समय में प्रायः हमारे कर्म प्रतीक रूप में हमारे सामने आते हैं।

सुनने वालों, यहाँ तक था आज का प्रोग्राम। अगली बार मैं आपके साथ फिर उपस्थित होंगी और सपनों के बारे में थोड़ा सा और आपको जानकारी मिलेगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

大

0: ശിവക്രട്ടുണ്ട മഹാകായ സൂര്യകോട്ടി സംപ്രഭ നിർവിധിനും കുരുമേദേവ സർവകാര്യഷു സർവദാ രുബ്രരു മിൽനേ കാ മൗക നഹി പാരഹ അഥ ശബ്ദോ സേ അപ്നോ കോ നമൻ കർ ലേതാ ഹൂ പ്രത്യേക വ്യക്തി കിസി ന കിസി രൂപ മേ ശ്രേഷ്ഠ ഹോതാ ഹൈ ഇസിലിയെ ആപ്കി ശ്രേഷ്ഠ കോ ഹൃദയ സേ നമസ്കാർ കർത്താ ഹൂ
1: फाहोन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं हम सब यहाँ उपस्थित हो गए स्टूडियो में और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर आज का विषय जो अभी हमारे मास्टर जी जुड़ने वाले हैं भारत से और हमारे साथ शांता खेमई जी अनुराधा जी और बबली जी भी उपस्थित है स्टूडियो में तो हम पहले अपने मास्टर जी को और जो भारत से जुड़ा हुआ है उनसे और अनुरोध करेंगे कि मास्टर जी अपना संदेश रखिए।
2: नमस्कार, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। इस बार भी हम उपस्थित हुए अपना कार्यक्रम लेके, इसके बाद बातचीत करते हैं, सब लोग अपना एंट्री डालेंगे।
1: तो मैं देख रहा हूँ बबली जी भी तैयार हो चुके हैं। बबली जी, आपका माइक ऑन है।
3: भावना ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराते हैं, वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच में भी है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
1: और अनुराधा जी, आपका माइक इस समय भी ऑन हो चुके हैं, तो आप भी अपना संदेश रखिए।
4: नमस्कार, और मैं तो ये कहना चाहूंगी, हे परमात्मा, तुमने ही मुझे दरिया जैसा विशाल दिल दिया है। कोई मुझे नाराज करेगा तो चलेगा, लेकिन मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, यही आपसे प्रार्थना है।

0: मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। आपको शांता की भी स्वीकार है यहाँ ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
1: उदास बैठे उनके लिए कुछ उदासी का चलाया जाए।
2: जैसे आप कहिए राजेंद्र जी, मास्टर जी तो आप ही हो, और जैसे आप कह ही चुके हैं कि जो उदास बैठे हुए हैं अभी, क्योंकि अभी संदेश तो हम सब रखने वाले हैं और आज का कार्यक्रम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, और भी लोग भी सहयोग दे रहे हैं। तो मास्टर जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हरिओम सरन जी ने और ये तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े, तो हम उस गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर कार्यक्रम में हम सभी जुड़ जाएंगे।

ज्योति का प्रकाश में, जैसे कि हर बार कुछ ना कुछ नई शिक्षा ज्योति के प्रकाश के माध्यम से सब लोगों को मिलती है, उसी के अनुसार हम आज बात करेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की एक किताब की। गीता प्रेस गोरखपुर जो धार्मिक ग्रंथ है, भारत में बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, जिन्होंने अभी तक कई करोड़ किताबें वितरित कर दी और छप गई उसमें और लोगों ने ले ली, हर हिंदू के हर किसी

उसमें गीता प्रेस का किताब घर में जरूर मिलता है, उसी के विषय में एक बातचीत है। गीता प्रेस गोरखपुर की एक किताब है, उसका नाम है एक लोटा पानी, उसमें एक कहानी है। कहानी का शीर्षक है हिंदू राज्य कैसे गया, यानी जो हिंदू के राज्य थे पहले वो कैसे गए। ये कहानी अमर सिंह की है। अमर सिंह मारवाड़ राजा के, जो मारवाड़ राज्य है उसके प्रसिद्ध राजपूत थे। वो 17वीं सदी में शाहजहाँ के राज दरबारी थे। अपने परिवार द्वारा निर्वासित करने के बाद वो मुगलों की सेवा में आए। उनकी प्रसिद्ध बहादुरी और युद्ध क्षमता के परिणाम स्वरूप उन्हें शाहजहाँ द्वारा शाही सम्मान और व्यक्तिगत पहचान मिली, जिसके बाद उन्हें नागौर का सूबेदार बनाया गया और बाद में उन्होंने ही यहाँ शासन किया। सन 1644 में, यानी 1644 में बादशाह शाहजहाँ का दरबार लगा था। 30 करोड़ के जवाहरातों से बने तख्ते ताऊस पर शाहजहाँ बैठे थे। दाहिनी तरफ वजीर दिलावर खान की गद्दी थी और बाईं तरफ प्रधान सेनापति सलावत खान की गद्दी थी। राजा अमर सिंह दरबार में आए और उन्होंने बादशाह को सलाम किया। इसके बाद न तो वजीर को सलाम किया न सेनापति को सलाम किया। वजीर दिलावर खान सूफी आदमी था, उसे किसने सलाम किया किसने नहीं किया इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन सेनापति सलावत खान घमंडी कट्टर था, उसको यह एक काफिर द्वारा उसका अपमान लगा। सेनापति, राजा साहब आप 8 रोज की छुट्टी पर गए थे मगर 16वें रोज आप तशरीफ़ लाए हैं। अमर सिंह ने कहा, मैं राजा हूँ जी, मैं जब आया आया, नहीं तो नहीं आया। सेनापति, आप राजा पहले थे, आज आप राजपूत लश्करे के सेनापति हैं, आप मेरे मातहत हैं, मैं जवाब चाहता हूँ। फिर अमर सिंह जी कहते हैं कि जवाब? सेनापति कहता, हाँ जवाब। अमर सिंह कहते हैं, काम पड़ गया था। सेनापति कहते हैं, जहाँपना के पास रुखती दरख्वास्त भेजना था या नहीं, मगर वहाँ तो बादशाही इस्लामी से इनकार है, गुस्ताखी इसी को कहते हैं, क्यों वजीर साहब? वजीर दिलावर खान अमर सिंह का पक्ष लेते थे। वजीर ने प्रधान सेनापति सलावत खान से बात को जाने को देने को कहा कि चलो जाने दो, छोड़ो। सेनापति ने माफ़ करने की जगह राजा अमर सिंह पर 7 दिन के लिए 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और शाम तक रुपया खजाने में जमा कराने को कहा और तब तक दरबार में नज़रबंद रहने का फरमान सुना दिया। अमर सिंह ने कहा कि अगर मैं जुर्माना न दूं तो? वजीर ने भी अमर सिंह का पक्ष लेते हुए अमर सिंह से कहा कि आपके पास पैसा नहीं है तो एक पैसा मत दो, मैंने आपको माफ़ किया। सेनापति कहता है, आप माफ़ करने वाले कौन होते हैं? सेनापति का सेनापति में सेनापतियों का सेनापति मैं हूँ, ये मेरे महकमे की बात है। तो क्यों ना एक संजय जी सुंदर सा नगमा हो जाए और आगे की कहानी इसके बाद चला दी जाए।

उसके बाद बहुत ही सुंदर सा नगमा जो प्रस्तुत किया अभी संजय जी ने, उसके बाद हम लौटे और अपनी कहानी के आगे की तरफ बढ़े। अमर सिंह ने पूछा कि नज़रबंदी के क्या मायने हैं, तो सेनापति ने कहा जब तक पैसे नहीं जमा करोगे तब तक यहाँ से नहीं जा सकते और रात आपको जेल में बितानी होगी। जब ये सब हो रहा था तो बादशाह शाहजहाँ चुप था और ताजमहल के ख्याल में खोया था। अमर सिंह ने बादशाह से दखल देने को आग्रह किया। अमर सिंह ने बताया कि 7 दिन तक वह अपने गुरुजी के पास कजरी वन में थे, इसलिए वहाँ से खत नहीं भेज सके। सलावत खान तो पहले से अमर सिंह को दंड देने के लिए सोचकर बैठा ही था, क्योंकि अमर सिंह ने दरबार में उसे सलाम नहीं किया था। उसने कोई भी सफाई सुनने से इनकार कर दिया और शाम तक 7 लाख रुपए जमा करने का फरमान सुनाया। अमर सिंह ठहरे राजपूत शेर, भरे दरबार में बादशाह के सामने कह दिया, न तो मैं जुर्माना दूंगा और न ही मैं नज़रबंद हूँ। वजीर दिलावर खान अमर सिंह का पक्ष ले रहा था तो सेनापति ने एक ऐसी बात कह दी जो उसकी मृत्यु का कारण बनी। सेनापति ने वजीर से कहा, आपके लापरवाही से ये काफिर लोग हमारी बराबरी करने लगे हैं। काफिर शब्द सुनते ही अमर सिंह ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और प्रधान सेनापति सलावत खान का सिर धड़ से अलग कर दिया। एकदम बाहुबली स्टाइल में काफिर कहने वाले का काटते हैं गला। यह देखकर दरबार रक्षक सेना अमर सिंह की तरफ बढ़ी और अमर सिंह बादशाह की तरफ बढ़ा। वजीर ने बादशाह का हाथ पकड़कर महल में ले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बादशाह ने वजीर से पूछा, अमर सिंह ने सलावत को मार डाला मगर वो मेरी ओर क्यों झपटा? जब वजीर ने कहा, वो आपको मारने के लिए नहीं, आपके चरण छूने के लिए आपकी तरफ बढ़ा था। बादशाह ने कहा, दरबार में लड़ाई हो रही है। वजीर ने कहा, जब तक दरबार के 300 सिपाही साफ ना हो जाएंगे तब तक लड़ाई होती रहेगी। बादशाह ने कहा, वह सबको काट डालेगा। वजीर ने कहा, बेशक अमर सिंह एक शेर का बच्चा है, 1000 भेड़ियों के लिए अकेला ही काफ़ी है। बादशाह ने कहा, वह बड़ा बहादुर है। वजीर ने कहा, बहादुरी की किताब में अमर सिंह का नाम सोने की स्याही से लिखा जाना चाहिए। यानी बादशाह की जो बहादुरी जो है वो एक सोने की उसकी तरह लिखी जानी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर जो कहानी चल रही है उसके लिए क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ा जाए और फिर कहानी का मूड आगे चलता रहे। तो संजय जी सुना देते हैं एक नगमा और फिर बढ़ते हैं कहानी की ओर।

तो लौटते हम अपनी कहानी की ओर, फिर आगे की कहानी जारी रहेगी। बात कर रहे थे अमर सिंह की और बहादुरी की। वजीर ने बादशाह से पूछा, जब ऐसे बहादुर हिंदू मौजूद हैं तब हिंदू शाही कैसे ख़त्म हुई? फिर वजीर दिलावर खान बादशाह को समझाता है कि सेनापति सलावत खान ने अमर सिंह को काफिर कहा था। हिंदू काफिर नहीं हो सकता, काफिर वो होता है जो खुदा को नहीं मानता। इस्लाम कहता है खुदा निराकार है, हिंदू कहता है खुदा निराकार साकार दोनों रूप में है। मगर हिंदू जो कहता है खुदा निराकार और साकार दोनों रूप में है, मगर ऐसा जो हिंदू कहते हैं उनके अनुसार अलग अलग सबकी वो है, विशेषता है कि खुदा निराकार है साकार है। कुछ लोग अपने अलग अलग स्टाइल से बात करते हैं कि खुदा निराकार है कि साकार है। फिर सलावत खान, फिर सेनापति ने कहा कि आपकी लापरवाही से ये काफिर लोग हमारी बराबरी करने लगे हैं। काफिर शब्द सुनते ही उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाली और प्रधान सेनापति सलावत खान का सिर से धड़ अलग कर दिया था। तो फिर वजीर खान, जो वजीर दिलावर खान थे, बादशाह को समझाता है कि सेनापति सलावत खान ने अमर सिंह को काफिर कहा था इसलिए मारा गया। बादशाह वजीर से कहता है कि मैं अमर सिंह को माफ़ करता हूँ, जाओ उसे बुला लाओ और मेरे सामने प्रस्तुत कर दो। वजीर कहता है कि क्या कोई ऐसा है जो सम्मान के साथ अमर सिंह को लिवा लाए? अर्जुन सिंह, मैं अमर सिंह का साला हूँ। अर्जुन सिंह कहता है कि मैं अमर सिंह का साला हूँ। वजीर कहता है कि जाओ अर्जुन, अमर सिंह को ले आओ और कहना बादशाह ने बुलाया है, तुमको 1,00,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। अर्जुन सिंह गया और अपनी बहन को अपने पक्ष में करके अमर सिंह को लिवा लाया। क्योंकि फाटक बंद था तो जो ही अमर सिंह ने खिड़की में अपना सिर डाला त्यों ही अर्जुन सिंह ने उसका सिर काट दिया और अमर सिंह का कटा हुआ सिर लेकर बादशाह के पास गया। सोचा बादशाह खुश होगा। वजीर बहुत क्रोधित हुआ और उसने अर्जुन सिंह को मारने के लिए तलवार निकाली ही थी कि बादशाह ने ये कहकर वजीर का हाथ पकड़ लिया कि अपनी तलवार एक हथियार पर चलाओगे। बादशाह वजीर से कहता है, एक हिंदू अमर सिंह का ही अर्जुन सिंह, अमर सिंह एक हिंदू अर्जुन सिंह, आपने पूछा था न कि हिंदू शाही कैसे गई? वजीर कहता है कि हाँ पूछा था, हिंदू राजा क्यों गया? बादशाह कहता, अब समझ गए कि हिंदू शाही का पतन हुआ, अब जान लिया हिंदू राज्य कैसे गया। वजीर कहता कि हाँ जहाँ अपना समझ गया। तो अब समझ में आया अफगानिस्तान पाकिस्तान बर्मा बांग्लादेश जावा सुमात्रा आदि देश को जो भारत का हिस्सा होते थे वो भारत से क्यों कटे, इसी कारण से ये भारत से कटे। और इसी प्रकार जो कहानी से सीख मिलती है, बहुत ही इसमें शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमारा जो साम्राज्य था या बहुत बड़ा विस्तार था उसको किस कैसे चले गया। इसको हम अपनी जो किताब छपी है उसकी कहानी गीता प्रेस गोरखपुर से, उसी के शीर्षक से लिया गया था और हमको बड़ी शिक्षाप्रद मिलता है। क्यों ना संजय जी एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आगे की तरफ। कहानी यहीं पे समाप्त होती है और इस कहानी से हमको बहुत सी शिक्षा मिलती है।

0: वालों, जैसे कि आपको पता है कि अनुराधा जी और बबली जी भी कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं और अभी शायद कुछ समय बाद स्टूडियो में शांता भी उपस्थित हो जाएंगे। पर अनुराधा जी, ये तो बताइए कि हमारे बुजुर्गों जो होते हैं और जा करके अपने सेहत के लिए क्या से क्या चीज और क्या किस प्रकार से उस पर ध्यान दे सकते हैं, तो हम सब के लिए जैसे कि भाई राजेंद्र जी भी संदेश सुनाए, तो अब इस समय जो अनुराधा जी हम सबको अपना संदेश रखने वाले हैं, तो अनुराधा जी
1: नमस्कार। सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मैं आशा करती हूँ कि आप सबका दिन बहुत मंगलमय हो। आज ये हम बात करना चाहेंगे कि बुढ़ापे में ये सोचिए जो 60 साल के ऊपर लोग हैं उनको क्या खाना ऐसा खाना चाहिए जिससे कि वो अच्छी हेल्थ उनकी रह सके, वो क्या कैसा खाना खाएं कि जिससे वो उनको स्वास्थ्य की कोई समस्याएं ना हो, तो इस बात पर संजय जी हम चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल एकदम अनुराधा जी, बस उसी का इंतजार में हम सब है, जरूर अपना और संदेश को आगे रखिए।
1: हर इंसान के माँ बाप का साथ जिंदगी भर बना रहना इस संसार का सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन इंसान की संभावित आयु घटने के कारण आजकल मनुष्य का बहुत लंबे समय तक जीना मुश्किल हो जा रहा है। मगर क्या हम अपने बूढ़े माँ बाप की संभावित आयु को बढ़ा सकते हैं, या हम जो लोग 60 साल के ऊपर हैं वो अपना लंबे जीवन की आशा कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन कुछ खाने पीने की चीजें ऐसी हैं, कुछ फूड्स खिलाकर हम उनके हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। तो आइए आज हम इसी बारे में चर्चा करते हैं कि क्या ऐसा खाएं जो जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम लंबी आयु जी सकें। तो ये बातें सभी पर लागू होती हैं, परंतु जो 60 साल की उम्र से ज्यादा लोग हैं उन्हें ये 7 चीजें जरूर खानी चाहिए। तो संजय जी, आप इससे सहमत हैं?
0: मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमारा तो अवस्था भी 60 के ओर जा रहे हैं और क्यों ना हमें कुछ जानकारी मिल सके तो ज़रूर उसे और जानकारी से शायद हम अपना लाभ भी उठा सकेंगे। पर अभी तो दूर है और ज़रूर आपके जो संदेश है उन संदेश को सुनने के लिए बहुत बेचैन हूँ, ना कि सिर्फ मैं ही बेचैन हूँ पर हमारे सभी सुनने वालों, जो इस 188 देशों तक के कार्यक्रम को सुना जा सकता है, जो जाकर के इंटरनेट द्वारा और ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो दप दयाबे प्लस से और सुन रहे हैं, और ख़ास करके जिनके लिए स्पेशल जो बनाया गया आएम जो निकाल दिया गया था और AM15 सेशन सस्तक के फिर और दोबारा जो इस समय मस्त को और बनवाया गया और उसे और रखा जा रहा है, तो हमारे सभी सुनने वालों इस बात के सुनने के लिए जरूर बेचैन हैं। और पर अनुराधा जी, क्यों ना ऐसा एक गीत रख देते हैं फिर, और गीत के बाद में आप अपना संदेश जो हम सब के लिए रखते हैं।
1: जी जरूर, ये संजय जी बहुत अच्छी बात है। चलिए गाना सुनते हैं, आप क्या सुनाने वाले हैं?
0: तो गाना तो शांता जी का पिटारा से निकाला जाता है यहाँ स्टूडियो में, जो हर बार वही भर करके ला कर रख देते हैं, तो रखते हैं और सुनते हैं कि क्या उन्होंने अव लेकर आए हैं।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुंदर सा गीत सुने और सुंदर सा गीत के बाद में हमारे साथ और जो स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं और अनुराधा जी जो संदेश रखने वाले हैं कि जब हमारा बुढ़ापा आ गया तो क्या कर सकते हैं, कौन सा और खाना पदार्थ आदि हम सबको खाना है ताकि हमारा जीवन और जो कि कोई तकलीफ ना आए, तो अनुराधा जी क्या संदेश आप रखने वाले हैं हम सब के लिए?
1: जी तो संजय जी, ये मैं बताना चाहूंगी कि जो 60 साल के उम्र से सीनियर सिटीजन जो हैं, वो अपनी उम्र को लंबा बनाने के लिए हम सिर्फ हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, और हेल्थ के खराब और सही होने का सबसे शुरुआती कारण पाचन तंत्र होता है। अगर आप हेल्दी फूड्स खा रहे हैं तो पाचन तंत्र उन फूड से न्यूट्रिशन निकालकर बॉडी को देता है, और बुढ़ापे में होने वाली अधिकतर स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रहा जा सकता है। वहीं बुढ़ापे में पाचन तंत्र कमजोर भी हो जाता है, जिस कारण हमें डाइजेशन को धीमा बनाने वाले फूड से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो सवाल यह पैदा होता है कि बुजुर्गों की डाइट कैसी हो और उन्हें बुढ़ापे में कौन से हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या अपने रोजमर्रा की डाइट में क्या खाना खाएं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की एक सरकारी हेल्थ वेबसाइट के मुताबिक बुजुर्गों की डाइट में रंग बिरंगी सब्जियां, फलियां, ताजे फल, साबुत अनाज, फाइबर वाले फूड और कम फैट वाले फूड्स होने चाहिए। इसके अलावा इन्हें पूरे दिन में पर्याप्त पानी पीना चाहिए और हल्का फुल्का व्यायाम मतलब एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इन सीनियर सिटीजन डाइट टिप्स, इनको हम सीनियर सिटीजन डाइट टिप्स कहते हैं, वैसे तो ये सभी लोग के लिए बनता है, पर ये हम आज सीनियर सिटीजन वालों के लिए बात कर रहे हैं कि ये डाइट अगर वो करें तो इसकी मदद से सीनियर सिटीजन की हेल्थ सही रखी जा सकती है, और बुढ़ापे में होने वाली जितनी स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं वो दूर रखा जा सकता है। तो चलिए, ये तो हो गई कैसे कि क्या खाना चाहिए, और हम आगे बताएंगे कि हम क्या खाएं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो संजय जी चलिए कोई गाना सुने।
0: जरूर अनुराधा जी, एक गीत जो हम प्लेयर पे रख चुके हैं उसे चलाते हैं और फिर उसके बाद में हम सब आपका जो संदेश है बेचैनी से इंतजार में हूँ और उसे हम सुनेंगे।

0: कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है डेनमार्क शहर से, हॉलैंड से, और जिसमें अनुराधा जी अपने ओर से संदेश रख रहे हैं। हमारा आज के खास करके जो 60 ईयर्स से ओल्डर के लिए, और जो आज उसके अंतर्गत में उन्होंने और संदेश रख रहे। अनुराधा जी, आप अपना संदेश को आगे जारी कीजिए।
1: प्यारे सुनने वालों, मैं आपको बता रही थी कि हम क्या खाएं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसके लिए ये 7 फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हमें अपने रोजमर्रा की जीवन में ये रोज यूज करने चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो सबसे पहले जो चाहिए है वो है प्रोटीन। तो सीनियर सिटीजन्स को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन शरीर में कैसे आए, क्या खाएं जिससे कि प्रोटीन हमारे शरीर में आए। तो सबसे अच्छा जो खाने का आइटम है जिससे जो भरपूर प्रोटीन से भरा है वो है अंडा। अगर आप अंडा खाते हैं तो उसमें बहुत शरीर को ताकत और मसल्स बनाने में अंडा आपकी मदद करता है। पर जो अंडा खाते हैं उनके लिए यह प्रोटीन का बहुत अच्छा एक फूड आइटम है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो अंडा नहीं खाते तो वो क्या खाएं। तो प्रोटीन, अगर आप अंडा नहीं खाते हो तो उसके बदले आप पनीर खा सकते हैं। पनीर में भी आप जो दूध फाड़ कर पनीर बनाते हैं, पनीर में बहुत प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन आप पनीर से भी ले सकते हैं। तो जो लोग अंडा नहीं खाते उनके लिए सबसे अच्छा प्रोटीन पनीर से ही उनको प्राप्त हो सकता है। तो पनीर अगर वो अपनी डाइट में डालें तो वो उनको बहुत उनके लिए उनके स्वास्थ्य के लिए वो ये बहुत अच्छा आइटम है जो उन्हें अपने डाइट में रोज खाना चाहिए। तो अंडा या तो खाएं, जो अंडे खाने वाले हैं तो अंडा खाएं, और जो अंडा नहीं खाते वो पनीर खाएं। तो ये तो हुआ प्रोटीन। अब आप दिन में, तो ये आप सोच लें कि आप में बुढ़ापे में अंडा खाने या पनीर खाने से 13 जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और ये आपके शरीर में जरूर शामिल होने चाहिए। तो अभी तो बात करी प्रोटीन की, और ऐसे अन्य खान पदार्थ है जो हमें अपने डाइट में शामिल करने चाहिए। तो ये हम करेंगे, एक गाना सुनेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि और कौन से खाने के आइटम है जो हमें खाने चाहिए।
0: सुनो वालों, हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ रहे हैं, फिर आप सुनते रहना। अभी और भी संदेश बाकी है, और जैसे कि आप प्रोटीन के बारे में अभी सुने तो क्या उसका अगर आप फरफांग कर सकते हैं तो पनीर से आप जरूर और उसे फरफांग किया जा सकता है, क्योंकि हमारा शरीर में कुछ और बुढ़ापा जब आने लगता है ना तो कुछ शायद कमजोरी भी हो सकता है ना अनुराधा जी।
1: जी,
0: और उसे संभालने के लिए कुछ चीजें को और प्रयोग करना पड़ता है ना।
1: जी, ये आपने संजय जी सही कहा कि जैसे उम्र ढलती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तो हमें अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपना खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हम खाएंगे वो हमारे शरीर में जाएगा, और जो जाएगा उससे हमें ताकत मिलेगी, और ताकत मिलेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हम जीवन अच्छा बिता सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना खान पीने में ध्यान दें, सोच समझ कर खाएं, खाने में तो देखिए बहुत मजा आता है कि तली हुई चीजें खाएं, पूरी, कचौड़ी, समोसे, पर ये कभी कबार तो अच्छी लगती है।
0: पानी पूरी का नाम आपने नहीं लिया।
1: पानी पूरी जरूर चाट खाते, पानी पूरी और जलेबी, गुलाब जामुन, ये खाने में तो और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और मन भी ललचाता है, पर क्या है कि ये कभी कबार तो आप खा लें, पर ये रोज रोज खाने से इनमें तेल इत्यादि होता है और ये बहुत तली हुई चीजें और बहुत ज्यादा चीनी वाली मीठी चीजें, ये एक उम्र के बाद हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इनको कभी कभार तो ठीक है, पर ज्यादातर हमें ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो कौन सी जो चीजें खानी चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे।
0: अनुराधा जी,
1: जी
0: हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम सब अनाउंस कर दिया था कि एक गीत को रखने वाले हैं और गीत तो अभी चला ही नहीं, तो पहले गीत चला देते हैं।
1: जी जरूर।

0: वालो, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि प्रोटीन के बारे में, और अनुराधा जी भी हम सबको और भी संदेश रखने वाले हैं। तो अनुराधा जी, इस समय आपका माइक ऑन किया गया है और आप संदेश को आगे रखिए।
1: जी, तो अभी बात कर रहे थे प्रोटीन। तो प्रोटीन तो सबको पता चल गया है, तो हम क्या तो पनीर या जो अंडे खाने वाले वो खा सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि हमें और क्या खाएं जिससे कि हम अच्छे सेहत हमारी बनी रहे। तो सीनियर सिटीजन की प्लेट में जो सबको, चाहे दिन का समय हो या शाम का, वो है एक आइटम जो शामिल करना चाहिए, वो है दही। दही बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि दही खाने से कैल्शियम मिलता है। आपको पता है दही इतना उसमें कैल्शियम होता है कि जो बुढ़ापे में कमजोर हो रही हड्डियों में को मजबूती प्रदान करता है। तो ये दही सबसे लाभदायक एक आइटम है जो हमें अपने रोज खाने पीने में, हमें दही को हमेशा आप उसको खाइए। वही यह जो बेहतरीन फूड है दही, क्योंकि दही में पाचन के लिए फायदेमंद हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। आपको पता है, आप दूध और दूध से ही दही बनता है, पर दूध और दही में बहुत अंतर होता है। दूध हो सकता है कि थोड़ा आप एक उम्र के बाद आपको सूट ना करे, आपके स्वास्थ्य के लिए आपको इतना फायदा ना करे जितना कि दही करती है, क्योंकि उसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। और ये हेल्दी बैक्टीरिया होने के कारण दही बहुत ही लाभदायक होती है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्दी फूड होता है। तो 60 साल की उम्र के ऊपर वाले लोग, प्लीज आप लोग दही का खाने पीने में रोज इस्तेमाल करें। दही का अलग अलग आप तरीके से खा सकते हैं, दही को स्मूदी की तौर से पी सकते हैं, दही का आप लस्सी बना सकते हैं, मीठी लस्सी बना सकते हैं, या आप उसमें नमक और जीरा डालकर उसका छाछ बना सकते हैं, जो बहुत लाभदायक होती है। और आप चाहें वो आप सुबह नाश्ते में दही का प्रयोग करें, या दिन के समय दही खाना चाहें, या शाम के समय दही की लस्सी, छाछ, स्मूदी, ये कोई भी, या प्लेन कोई भी, बस आप प्लेन दही भी खा सकते हैं। ये दही तो एक ऐसा खान पान है जो कभी भी दिन भर कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, और ये कैल्शियम से भरपूर है। और कैल्शियम से भरपूर होने के कारण इसके खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके हड्डियों में दर्द कम होएगा, आपके हड्डियां मजबूत रहेंगी, तो आप चलने फिरने में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो कैल्शियम ये सबसे जरूरी हमारे शरीर में जो हड्डियों के लिए चाहिए होता है ओल्ड एज में, और सीनियर सिटीजन्स को दही सबसे लाभदायक फूड आइटम है जो आपको खाना चाहिए। और आप अगर दही को स्मूदी के तौर से सुबह पीना चाहें नाश्ते में, तो दही में आप ब्लूबेरी मिलाकर पिए, स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, या आप दही में सीरियल डालकर उसको खा सकते हैं। तो दही को आप किसी भी रूप में किसी के साथ भी खा सकते हैं। दिन में आप खाना खाते समय खाली दही चावल खा सकते हैं, दाल चावल के साथ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैसे भी आप रोटी के साथ जब खाना खाएं तो आप सब्जी, दाल, सब्जी और दही, तो बहुत आपको उसमें हल्का महसूस होता है। और सबसे अच्छी बात कि ये कैल्शियम से भरपूर है। तो संजय जी, आपने देखा कि हम प्रोटीन की बात कर रहे थे।